FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संघ संवत 1948 की अश्विन मास की 12वीं तिथि तदनुसार 4 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ।

0: राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार चिंतन।

चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं होता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री राम चरित मानस गान भाग 331 लंका कांड। आज आप सुनेंगे 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। आज सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकी सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 11 सुनिए विविधा के अंतर्गत रविंद्र जैन केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, रविंद्र जैन पर, जगजीत सिंह पर और निदा फाजली पर। 12:05 यादों की महफिल, 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 से मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक वायलिन वादक, लेखन असद जहदी का, दिग्दर्शक मदन शर्मा का। 4 पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा आज इस बातचीत का तीसरा भाग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। पांच बजे छाए गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम, आपको फिर से बता दे सुनिएगा श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 4। आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शिखर सेन, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की।

फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला शाम 7 बजे से सैनिकों की शौर्य गाथा। एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर की शौर्य गाथा सुनेगा। सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है कल्पना शेट्टी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए नाटिका परिवर्तन। इसका पहला भाग लेखक हैं कामना चंद्रा, निर्देशक हैं अनुराधा शर्मा। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार। 10 बजे छायागीत। 10:30 पर ढलती जाए रात। और 11 बजे सुनिए विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंका कांड भाग 331।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्ण चंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे, बांग्ला

0: में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी,
1: जी
0: जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे। और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
0: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहे। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाँव, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
0: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी जी,
0: तो उनके ही ऊपर वो फिल्माया गया था
1: जी।
0: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाँव का ये गीत श्री कृष्णचंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आँखें

0: धूम छाओ फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनके गायन की विशेषता थी, क्या कारण था, इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है
0: जी,
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं
0: जी,
1: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया, पर कुछ गायक

0: थे जो मस्ती वाले गायक थे,
1: जी जी
0: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज में तत्व होता था,
1: वरदान मिला था,
0: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है
1: जी।
0: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने।
1: जी जी।
0: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, चार दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू ले के हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा मन की आंखें खोल। तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में फिल्म है पूरण भगत
1: जी।
0: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है, और शब्द है जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल
1: जी।

0: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे, उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन,
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूँ ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में, या और दूसरे

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो
1: ये
0: आपसे यही
1: पटियाली
0: अनुरोध
1: का रंग
0: करूं।
1: है, मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं। इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे संगीत सरिता विविध भारती से FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं नमस्कार अलवर।

आकाशवाणी अलवर के लोकप्रिय प्रातःकालीन कार्यक्रम नमस्कार अलवर में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिमतवार। प्रिय श्रोताओं, सुबह जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पेड़ पर चहचहाती चिड़िया दिखाई देती है। गली में कोई श्वान अपनी पूंछ हिलाता हुआ हमारे पास से गुजरता है। किसी घर के बाहर गाय खड़ी दिखाई देती है। खेतों में पक्षी दाना चुगते हैं और जंगलों में वन्य जीव अपनी प्राकृतिक संसार में जीवन जीते हैं। हम अक्सर इन्हें अपने आसपास देखते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है दोस्तों कि इनका भी जीवन है, इनका भी अपना संसार है और इन्हें भी भय, भूख, पीड़ा और स्नेह का अनुभव होता है। श्रोताओं, आज 4 अक्टूबर है, विश्व पशु दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्य की नहीं, इस धरती पर मनुष्य के साथ असंख्य पशु पक्षी और जीव जंतु भी रहते हैं। प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है श्रोताओं, जब हम अपने साथ रहने वाले जीवों के प्रति भी संवेदनशील रहें। आज के नमस्कार अलवर कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व पशु दिवस, पशुओं के प्रति करुणा और हमारी जिम्मेदारी। तो आइए अपने भीतर की संवेदना को थोड़ा सा और जागृत करें। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य और पशुओं का संघर्ष हजारों वर्षों पुराना है। हमारे गांव में गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, घोड़े केवल पशु नहीं रहे बल्कि ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी रहे हैं।

कृषि से लेकर परिवहन तक पशुओं ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भले ही आज दोस्तों आधुनिक मशीनों ने बहुत से काम अपने हाथों में ले लिए हैं, लेकिन पशुओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। हमारे घरों में पालतू पशु हैं, सड़कों पर बेसहारा पशु हैं, गाँव में पशुधन है और जंगलों में वन्य जीव। हर जीवन प्रकृति में अपना स्थान है। एक छोटी सी चिड़िया बीजों के प्रसार में अपनी मदद कर सकती थी। मधुमक्खियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई जीव खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं। मतलब किसी एक जीव को प्रकृति से हटाने का प्रभाव केवल उसी जीव तक सीमित नहीं रहता, प्रकृति हर दूसरे से जुड़े हुए जीवन का विशाल तंत्र है। प्रिय श्रोताओं, इसी प्रेम की भावना से, प्रकृति की भावना से सुनते हैं पहला प्यारा गीत।

प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्कार अलवर आकाशवाणी के सरिस्का चैनल से। पशुओं के प्रति करुणा, छोटी सी मदद बड़ा संदेश। प्रिय श्रोताओं, हमारे आसपास रहने वाले आवारा या सामुदायिक पशुओं के प्रति व्यवहार भी हमारी संवेदनशीलता की पहचान बनता है। गर्मी के दिनों में घर के बाहर एक छोटी सी कटोरी में साफ पानी रख देना, सर्दियों में जरूरतमंद पशुओं के प्रति सुरक्षित स्थान उपलब्ध करा देना, घायल पशु दिखाई देने पर संबंधित पशु चिकित्सा सेवा या स्थानीय सहायता को सूचना देना, यह बहुत छोटे से काम लगते हैं, लेकिन दोस्तों किसी जीव के लिए यही छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है। हाँ, पशुओं के प्रति संवेदनशीलता का यह अर्थ यह भी नहीं है कि हम सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार करें। अनजान पशु को अचानक छेड़ना, उसके बच्चों के पास जाना भी उचित नहीं है। किसी को परेशान करना, पत्थर मारना या जानबूझकर चोट पहुंचाना अमानवीय व्यवहार है दोस्तों। और यदि कोई पशु घायल या बीमार दिखाई दे तो स्वयं जोखिम लेने के बजाय प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या संबंधित स्थानीय सेवा की सहायता लेना बेहतर होता है। हमारा संदेश भी सरल सा है, दया कीजिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है अलवर की आवाज़ 103.1 सरिस्का चैनल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम नमस्कार अलवर। प्रिय श्रोताओं, अलवर की पहचान केवल अपने ऐतिहासिक किलों और समृद्ध संस्कृति से नहीं है, हमारे क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, अलवर के निकट स्थित सरिस्का का वन क्षेत्र वन्य जीवों और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाघ सहित अनेक वन्य जीव और पक्षी इस प्राकृतिक परिवेश का हिस्सा है। जब हम जंगल की बात करते हैं तो केवल पेड़ों की बात नहीं करते, जंगल का अर्थ है पेड़ पौधे, पक्षी, कीट पतंगे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, जल स्रोत और इनके बीच बना प्राकृतिक संतुलन। वन्य जीव संरक्षण केवल वन विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, पर्यटक भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जंगल में प्लास्टिक ना फेंकें, वन्य जीवों को भोजन ना दें, तेज आवाज से बचें, निर्धारित मार्ग और नियमों का तरीके से पालन करें, सही से पालन करें और सबसे महत्वपूर्ण, वन्य जीवों को उनके प्रति प्राकृतिक व्यवहार के साथ जीने दें, क्योंकि जंगल उनका घर है श्रोता।

प्रिय श्रोताओं, राजस्थान की गर्मी हम सभी जानते हैं। ऐसे मौसम में पक्षियों के लिए पानी का महत्व और बहुत बढ़ जाता है। आप अपने घर की छत, बालकनी या सुरक्षित स्थान पर एक छोटी सी कटोरी साफ पानी की रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें

पानी का पात्र ऐसी जगह रखें जहां बिल्ली या अन्य शिकारी आसानी से ना पहुंच सके। पानी नियमित रूप से बदलें, पात्र को साफ रखें। गर्मी के मौसम में ये छोटा सा प्रयास कई पक्षियों के लिए जिम्मेदारी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। इसी तरह यदि घर में पालतू पशु है तो उसे पर्याप्त पानी, संतुलित आहार, स्वच्छ स्थान और आवश्यक चिकित्सीय देखभाल देना हमारी जिम्मेदारी है। पालतू पशु रखना केवल प्रेम का विषय नहीं है दोस्तों, यह जिम्मेदारी का संकल्प भी है। पशु को घर में लाने से पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या उसके लिए हम भोजन, स्वास्थ्य, समय और देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाएंगे, क्योंकि पशु चिकित्सा कोई खिलौना नहीं है दोस्तों।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे विश्व पशु दिवस के बारे में। आज विश्व पशु दिवस के अवसर पर हमें एक बड़ी बात समझने की आवश्यकता है। वो क्या? केवल पशुओं को बचाना हमारा मतलब नहीं है, पर्याप्त नहीं है दोस्तों। हमें उनके आवास यानी कि हैबिटेट्स को भी बचाना होगा। यदि जंगल कम होंगे, जल स्रोत सूखेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, प्लास्टिक फैलेगा, तो पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक जीव कठिन होता जाएगा। इसलिए पशु संरक्षण का रास्ता पर्यावरण संरक्षण से होकर गुजरता है। साथियों, पेड़ लगाना, जल स्रोतों को स्वस्थ रखना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, कचरे का उचित निस्तारण करना

प्राकृतिक क्षेत्रों में जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करना, ये सभी पशु पक्षियों की रक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। याद रखिए मित्रों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता मालिक और सेवक का नहीं, सह अस्तित्व का भी है। धरती पर हमारा अधिकार जितना है उतना ही हमारा दायित्व भी है दोस्तों।

प्रिय श्रोताओं, आज के नमस्कार अलवर में हमने बात की विश्व पशु दिवस की। हमने जाना कि पशु हमारे जीव और प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। आज जरूरत केवल पशुओं से प्रेम करने की नहीं, बल्कि उनके प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील व्यवहार करने की भी है। आइए आज एक छोटा सा संकल्प लें, हम किसी जीव को अनावश्यक नष्ट नहीं करेंगे, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहेंगे, जहाँ संभव हो जरूरतमंद जीव की सुरक्षित तरीके से सहायता करेंगे, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि करुणा केवल मनुष्य के लिए नहीं, हर जीव के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस समाज में कमजोर और मूक जीवों के प्रति संवेदना जीवित नहीं रहती है, वही समाज वास्तव में सभ्य कहलाता है। इसलिए ये संवेदना होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक पेड़ बचाएं, एक जल स्रोत बचाएं, एक पक्षी के लिए पानी रखें, एक घायल जीव के लिए सहायता का हाथ बढ़ाएं और इस धरती को सभी जीवों के लिए थोड़ा और सुंदर बनाएं। दोस्तों, इसी संदेश के साथ नमस्कार अलवर से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय, जानकारी और नई ऊर्जा के साथ। मैं हूं आपका चहेता दोस्त नरेंद्र, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी अलवर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहली कोशिश।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना।
6: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना।
7: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या?
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपका फिर से एक बार स्वागत। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जिसे लिया हमने तेरे नाम फिल्म से।

श्रोताओं, आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की, संगीत हेमेश ऋषमे का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। फिल्म का नाम तेरे नाम।

श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अभी आपने सुना तेरे नाम फिल्म से गीत। आइए सुनते हैं मैं हूं ना फिल्म में साबरी ब्रदर्स और

श्रोता आवाज सोनू निगम और आफताब साबरी और हसीन साबरी की, जावेद अख्तर के बोल और संगीत अनु मल्लिक का, फिल्म का नाम मैं हूं ना।

0: अभी आपने सुना प्यार क्या है प्यार करेंगे फिल्म में शब्बीर कुमार को। गीत के बोल थे SH बिहारी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM बैंड 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया बंगाली मराठी पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह, भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता

0: केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
3: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
4: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है, जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला

0: जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्धविराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो की याद में आयोजित की जा रही है। श्री शेखो ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
1: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द

0: पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन फाइव के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी, दैनिक जागरण की सुर्खी है। स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हाड़ोती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हाड़ोती।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज के फनकार जगदीत सिंह, सुनते हैं उनकी गाई पहली पेशकश।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
7: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
0: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
1: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
3: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: अंतराल के बाद आइए श्रोताओं, फिर से सुनते हैं सुगम संगीत और फनकार जगदेश सिंह अगली पेशकश।

जगजीत सिंह की गाई इसी गजल के साथ सुगम संगीत समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य पत्रिका, भेंटवार्ता, अनिद्रा, कारण, प्रभाव और समाधान, डॉक्टर पवन शेखावत से शिव कुमार की बातचीत।

0: स्वास्थ्य पत्रिका सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा नींद में बिताता है। ऐसा नहीं है कि यह हिस्सा बेकार गया, बल्कि यही वो समय है जो हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश है। तो आखिर अच्छी नींद क्या है, क्यों जरूरी है और अनिद्रा जैसी समस्याएं हमें किस दिशा में ले जा रही हैं, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं राजकीय जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत। शेखावत साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: जी नमस्कार सर।
0: जी सर, एक आम समस्या है अनिद्रा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार नींद क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे कि नींद क्या होती है।
1: आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन महत्वपूर्ण सोपान जो आयुर्वेद के उपस्तंभ कहे गए हैं, ये तीन जो है वो हमारे जीवन को धारण करने वाले महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं। यहाँ आहार के तुरंत बाद जो है निद्रा पर फोकस किया गया है। तो नींद जो है वो केवल एक आराम का विषय नहीं है, नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को एक एनर्जेटिक रखने का और अच्छा और बेहतर बनाने का एक साधन है।
0: जी सर, कई बार मन में विचार आता है कि हम सोएं क्यों, जब नींद ना आए तो सोने की जरूरत नहीं है, हम और भी काम कर सकते हैं, और पैसे

0: कमा सकते हैं। तो नींद के क्या लाभ हैं, नींद क्यों जरूरी है?
1: नींद हमारे जो शरीर के तीन प्रमुख उपस्तंभों में से एक है। अगर हम पर्याप्त और उचित मात्रा में अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हम किसी भी तरीके से बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे, फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से। हमारे शरीर को थकान से दूर करने के लिए, हमारे मन को विश्राम करने के लिए, हमारी जो इंद्रियां हैं उनको आराम देने के लिए हमें नींद बहुत ही आवश्यक होती है। और एक अच्छी नींद लेने पर हमारा फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, हम अच्छे बल और उत्साह के साथ अपने कार्यों में रुचि से कार्य कर पाते हैं, और हमारी सारी जो मेंटली कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। शरीर की हमारी याददाश्त जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो यह सब जो है उचित और एक अच्छी निंद्रा के लाभ हैं, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बात नींद की कि नींद क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है। अब इसके विपरीत हम बात करेंगे कि अनिद्रा, जब हम नींद ना आए वो वाली स्थिति की हम बात कर रहे हैं, तो अनिद्रा को हम कैसे जानेंगे कि ये अनिद्रा है, ये स्थिति ऐसी है कि ये अनिद्रा की स्थिति, जिसको इंसोम्निया भी कहा जाता है अंग्रेजी में, तो ये क्या है फिर?
1: नींद जो है वो एक स्वभाव है मनुष्य का, और जब हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से जब थक जाती हैं, जब हमारा मन थकान महसूस करता है, तो स्वतः ही हम सबको रात्रि समय में हमें नींद आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब हम देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, या बार बार रात को नींद खुल जाती है, या पूरी तरह से अच्छी गुणवत्ता वाली नींद नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति को हम प्राय अनिद्रा कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं।
0: जी, तो हम किसी व्यक्ति को देखकर क्या ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अनिद्रा का शिकार है?
1: अनिद्रा की जो स्थिति होती है उसमें वह व्यक्ति जब सुबह प्रातःकाल जब उठेगा तो वो बहुत एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, और अपने आप को वीकनेस फील करता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की उदासी दिखाई देती है, एक्टिवनेस बहुत कम होती है, और उनके फेस को देखकर ये रीड किया जा सकता है कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनिद्रा का शिकार है।
0: तो क्या इसका कार्य प्रणाली पर भी कोई प्रभाव पड़ता है?
1: कोई व्यक्ति ठीक तरीके से नींद नहीं ले पा रहा है तो निश्चित रूप से वो फिजिकली और मेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
0: तो ये तो रही बात अनिद्रा की, कि अनिद्रा की स्थिति कब मानी जाती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति मान लो जो नींद लाने की कोशिश कर रहा है या अपने बिस्तर पर है लेकिन उसको नींद नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में फिर उसको क्या उपाय हो सकता है, क्या किया जाना चाहिए उसके लिए फिर?
1: कोई व्यक्ति बिस्तर पर है और वो काफ़ी प्रयास कर रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है, उनमें से बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जो कारण होते हैं और कुछ हमारे मानसिक कारण बताए गए हैं।
0: जी
1: अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें तो आज के समय में हमारे रात्रि के समय में घंटों जो हैं वो मोबाइल या स्क्रीन टाइम पर बीत जाते हैं। इसके अलावा देर रात भोजन करने की जो हमारी आदत बनी हुई है, साथ ही साथ संध्याकालीन समय में या रात्रिकालीन समय में जो कैफीन युक्त पदार्थ हैं, चाय और कॉफ़ी, इस तरह के पेय पदार्थों का हमारा जो सेवन होता है, अत्यधिक काम का जो हमारे ऊपर प्रेशर एक दबाव होता है, पूरे दिन भर की हमारी जो अनियमित एक दिनचर्या होती है, तो इन सब का जो परिणाम है वो हमारी फिर एक विकृत रात्रिचर्या के रूप में और अनिद्रा के रूप में हमें दिखाई देता है। इसी के साथ ही हमारे कुछ मानसिक कारण भी हैं, जैसे चिंता, तनाव, भय, क्रोध, इस तरह की कुछ शोक वाली जो स्थितियां होती हैं, इस स्थितियों में भी हमें बेहतर जो है वो नींद नहीं आती है। जो रात्रिचर्या में अच्छी नींद के लिए प्रयास करना चाहते हैं या अच्छी नींद चाहते हैं, उससे पूर्व में वो अगर पूरे अपने दिन भर की दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, मानसिक कारण बताए गए इन कारणों को दूर रखेंगे, तो निश्चित ही हमें रात के समय में स्वभाव से एक अच्छी नींद आएगी।
0: जी अच्छा, अनिद्रा के लिए सर हम और डीपली हम बात करें तो शारीरिक रूप से ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती है?
1: शारीरिक कारण में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारी ये आहार विहार से जुड़े हुए जो कारण हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल से जुड़े हुए जो कारण हैं, हमारे जो ये मानसिक कारण हैं, ये होते हैं। और इसके अलावा कोई विशेष परिस्थितियों में कभी रोग विशेष की कोई अवस्था भी हो सकती है कि जिसकी वजह से भी पेशेंट को नींद नहीं आए।
0: जी सर, मानसिक कारण में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन डिस्टर्ब रहते हैं, ऑफिस में भी वो ठीक से व्यवहार नहीं होता उनका, घर पे भी इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो मानसिक रूप भी क्या अनिद्रा का कारण है मुख्य?
1: जी, मानसिक तनाव आज के समय का सबसे बड़ा कारण है अनिद्रा का, क्योंकि जब हमारा मन शांत नहीं होगा तो किसी भी रूप में हम अच्छी नींद नहीं ले सकते हैं, और अल्प निद्रा, अनिद्रा और ये सब होने से चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, सिर दर्द, कमजोरी और

0: अनेकों स्वास्थ्य समस्याओं से हम लोग सफ़र करते हैं, तो इन सब का उचित समाधान के लिए हम लोग आयुर्वेद की जो रात्रिचर्या हमें बताई गई है उसका ठीक से अगर हम पालना करें, यानी कि हम सोने से लगभग 1 से 2 घंटे पहले एक तैयारी रखें कि हम किसी भी तरह का जो समय है वो मोबाइल और स्क्रीन टाइम को बिल्कुल सीमित कर दें। रात के समय में सोने से लगभग 2 घंटा पहले हम हल्का भोजन रखें। रात को सोने से पहले हम लोग पैर के तलुओं पर हल्का मसाज करें पैर धोने के बाद, और सकारात्मक चिंतन रखें। एक अच्छा माहौल जो है वो नींद के लिए क्रिएट करें। हम रात को अच्छी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं सोते समय, हम अच्छा कोई भी संगीत सुन सकते हैं, और हम थोड़ा सा ध्यान का अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बेहतर नींद हमें आएगी।
1: जी, आपने बताया कि किस प्रकार से अच्छी नींद आ सकती है, तो इसमें संगीत की कितनी भूमिका होती है? अगर संगीत सुन के व्यक्ति सोने का प्रयास करे तो वो कितना प्रभावी हो सकता है?
0: हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं उनमें सबसे जो प्रमुख है वो मन है, और संगीत का जो है मन पे सीधा सीधा प्रभाव होता है। अगर हम वास्तव में ही कोई अच्छा संगीत सुन रहे हैं, एक शांत और मधुर संगीत सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हम मन को एकाग्र करने का, शांत करने का एक प्रमुख साधन होगा, और उस समय बेहतर नींद आने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
1: शिखाव साहब, संगीत की बात चली है तो एक ऐसा ही एक गीत जो कि बहुत ही शांत हो, ऐसी प्रकृति का हो, जिसको आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें।
0: ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये
1: ये
0: गाना,
1: चंचल हवा
0: ये चंचल
1: बहुत ही
0: हवा।
1: खूबसूरत गीत है, और आजकल तो युवा भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस गीत को, क्योंकि
0: जी
1: गाना
0: सर,
1: बहुत पुराना है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो पुराने संगीत को कुछ पसंद करने लगी है, इसलिए गाना ज़्यादा सुनने को मिलता है। श्रोताओं, सुनते हैं इस गीत को।
2: ये रातें, ये मौसम।

0: दिखा इरादे मौसम नदी का किनारा चंचल हवा।
1: श्रोताओं, गीत के बाद फिर से स्वागत है आपका। हम बात करें अनिद्रा के बारे में और अब हम डॉक्टर पवन शेखावत से जानेंगे कि अनिद्रा की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वो क्या है, किस प्रकार से आयुर्वेद में इसका इलाज किया जाता है। बीमारी तो हम नहीं कह सकते, एक व्यवहार है व्यक्ति का, लेकिन फिर भी इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है इसको।
2: अनिद्रा प्राय जो है वो एक रोग नहीं है, वो हमारी गलत

0: इसे हम रोग नहीं कहेंगे प्राय। आयुर्वेद में किसी भी रोग की चिकित्सा वो कोई एकमात्र नींद की गोली नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा ही रूट कोज पर काम करता है। और आयुर्वेद अनिद्रा के लिए मानता है कि मुख्य रूप से ये वात दोष जो है उसकी अधिकता के कारण जो है ये रोग होता है। वात दोष जो है उसकी वृद्धि में, जैसा कि शरीर में हमने कहा गया आयुर्वेद में कि वात पित्त और कफ तीन प्रमुख दोष होते हैं, इनके साम्य अवस्था है जो आरोग्य का कारण है, और इनकी अधिकता एवं न्यूनता ये रोग का कारण बनती है
1: जी।
0: तो यहाँ अनिद्रा में मुख्य रूप से जो हमारे जितने भी लाइफस्टाइल की जो आधुनिक जीवन शैली में जो हमारे अभी कारणों का जो विवेचन किया गया था पूर्व में, तो ये सारे ही जो कारण हैं ये वात वर्धक होते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं
1: जी। शेखावत साहब, यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि जो वात है उसका संतुलन कब बिगड़ जाता है?
0: वात पित्त कफ तीनों की ही जो एक साम्य अवस्था है वो आवश्यक भी होती है
1: जी।
0: लेकिन हमारे वात वर्धक आहार, जैसे कि कोई गरिष्ठ भोजन हमने किया जो कि हमारे शरीर में ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, तला भुना भोजन है, बेसन मैदा, इस तरह की जो चीजें हमने ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इस तरह के खान पान से जो है वो हमारा वात दोष है वो बढ़ता है। विहार में भी अगर हम जो शीत गुण है वो भी वात की वृद्धि करता है
1: जी।
0: तो इस तरह से जो हमारा आहार और विहार जो वात को बढ़ाने वाला है उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, वात को संतुलित करना चाहिए। तो इसकी जो चिकित्सा जो हम आयुर्वेद में कर रहे हैं, तो सबसे पहले निदान का परिवर्जन करते हैं, जो मूल कारण जो है उनको हम दूर करते हैं। तो उसके अलावा मूल कारण जब हमारे दूर हो जाएंगे तो उसके अलावा हम इसमें आयुर्वेद में पंचकर्म में अभ्यंग, शिरोधारा, बस्ती, इस तरह की जो चीज़ों का भी चिकित्सक दिशा निर्देश के अनुसार उपयोग करके और बेहतर चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, आपने पंचकर्म का जिक्र किया अभी, तो सर पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे होते हैं और ये किस तरह से नींद को प्रभावित करते हैं।
0: आयुर्वेद में जो पंचकर्म है वो एक शोधन प्रक्रिया चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, और इसमें पांच मुख्य कर्म होते हैं, जैसा कि पंचकर्म कहा गया
1: है। जी
0: जी, जी। कुछ उपकर्म में शिरोधारा है, शिरोवस्ती है। तो इस शिरोधारा जो है वो नींद की, अनिद्रा की जो स्थिति है उसमें बहुत ही बेहतर और उपयोगी सिद्ध होता है। और शिरोधारा में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिर पर एक धारा के रूप में जो है औषधीय तेल जो है उसका उपयोग किया जाता है, और उससे जो है वो नींद लाने में ये बड़ा ही बेहतर और कारगर उपाय सिद्ध होता है बिना किसी दवा।
1: शिखावत साहब, योग और प्राणायाम, ये कहते हैं आयुर्वेद और योग और प्राणायाम लगभग एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, तो इनकी क्या भूमिका हो सकती है योग और प्राणायाम की, जिसमें कि नींद अच्छी आ जाए?
0: आयुर्वेद में जितने भी श्वास रक्षण के जो सिद्धांत बताए गए हैं उन्हीं में से एक योग और प्राणायाम है। योग और प्राणायाम की सभी तरह के जो रोग हैं उनके संरक्षण में, उनकी रोकथाम में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम निश्चित रूप से योग जो है वो हमारे मन को साधने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और अनिद्रा की स्थिति में हम प्राय देखते हैं कि मानसिक असंतुलन की स्थिति ही सबसे ज़्यादा पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और कुछ श्वासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण आसनों का नियमित रूप से अगर अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बेहतर नींद लाने में ये उपयोगी सिद्ध होते हैं।
1: शेखावत साहब, एक प्रश्न और हमारे जहन में आता है कि कुछ व्यक्ति दिन में सोते हैं, तो दिन में सोना ये आयुर्वेद में किस प्रकार से इसको माना गया है कि दिन में सोना जरूरी है या कोई आवश्यकता नहीं है?
0: जी नहीं, आयुर्वेद में केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु में ही दिन में सोना जो है हितकर माना गया है, और बाकी किसी भी ऋतु में प्राय हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ के। अगर वृद्ध है, कोई बच्चा है या कोई रोगी व्यक्ति है, इन अवस्थाओं को अगर हम छोड़ दें तो दिन में सोना केवल ग्रीष्म ऋतु के अलावा किसी भी ऋतु में हितकर नहीं माना गया।
1: कुछ ऐसे भी होते हैं जो रात को कम सोते हैं और फिर दिन में सो लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमने अपनी पूरी 8 घंटे की नींद पूरी कर ली है, तो क्या ऐसे माना टुकड़े टुकड़े में जो नींद होती है क्या उसको 8 घंटे की हम मान सकते हैं?
0: आयुर्वेद में इस तरह से हम नींद को बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानते हैं कि आप रात की जगह अगर दिन में सो लेंगे तो वो आपकी नींद की पूर्ति हो जाएगी।
1: जी, जी।
0: नींद केवल एक समय पर आधारित नहीं है कि आपने 8 घंटे की नींद ले ली है, नींद के साथ साथ एक उचित समय, जब रात्रि का जो एक समय है वो निश्चित रूप से नींद के लिए एक सुनिश्चित समय है। तो प्राय अगर कोई इस तरह का किसी का वर्क शैली कार्यशैली इस तरह की नहीं है, कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है, तो आम आदमी को जो है वो रात को ठीक समय पर 9 से 10 बजे के बीच में जो है वो सोना चाहिए, और प्रातःकाल 4 से 5 बजे के बीच में उठना चाहिए। इस तरह का दिनचर्या का अर्थ यही होता है कि दिन के सारे जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो एक निश्चित क्रम से

0: क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक जैविक घड़ी के आधार पर चलता है, और हमारे शरीर को जैसा जैसा हम निर्देश देते हैं उसी हिसाब से शरीर चलता है। लेकिन अगर हर दिन हम आगे पीछे करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये जैविक घड़ी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है गड़बड़ा जाता है, और उस समय भी हमें अनिद्रा की स्थिति पैदा होती है।
1: आपसे और भी हम टिप्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत और आपकी पसंद का जो अपने श्रोताओं को आप सुनवाना चाहें।
0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: वाह, खूबसूरत गीत है, सुनते हैं इस गीत को।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: इस गीत के बाद फिर से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और शेखावत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नींद के कुछ टिप्स हमारे तमाम श्रोता इस समय जो आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, और हो सकता है उनमें से बहुत से ऐसे लोग हों जो अनिद्रा का शिकार हों, तो वो जानना चाहेंगे कि कैसे अच्छी नींद लाई जा सकती है। उनको कार्यक्रम के आखिर में, बातचीत के आखिर पड़ाव में आप अपने कुछ टिप्स बता दीजिए।
1: जो भी लोग अनिद्रा के शिकार हैं या जिन्हें इस तरह की परेशानी लगातार रहती है, उन सभी को हमें सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। पूरे दिन के हमारे सारे जो क्रियाकलाप हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए, ठीक समय पर। उसके अलावा हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले हम बिल्कुल भी मोबाइल या स्क्रीन टाइम का यूज़ ना करें। रात को सोने से लगभग 2 घंटे पहले हम जो है भोजन ग्रहण कर लें। शाम के समय में हम हल्का भोजन लें। कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन से हम उस समय बचें, और रात को सोते समय हम गुनगुने दूध का नियमित रूप से सेवन करें। पैरों के तलवों पर हल्का तेल का मसाज करें तो, और रात को हम कुछ भी अच्छा ध्यान कर सकते हैं, कोई अच्छा संगीत सुन सकते हैं। तो ये सारे उपक्रम अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर नींद आएगी। और हम सभी इस बात को भी ध्यान

0: रखें कि नींद जो है वो केवल एक समय की बर्बादी नहीं है, ये नींद जो है वो हमें अगले दिन के लिए बेहतर शारीरिक मानसिक क्षमता से कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए हमें नींद को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और जब भी हमारा शरीर आराम मांग रहा होता है तो हमें पर्याप्त मात्रा में उचित नींद लेनी चाहिए।
1: जी, तो श्रोताओं, हमने जाना नींद क्या है और अनिद्रा क्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है। हम बात कर रहे थे राज्य के जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय अलवर के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन शेखावत से। शेखावत साहब, आज आपने वक्त निकालकर हमारे तमाम श्रोताओं के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका भेंट वार्ता, अनिद्रा कारण प्रभाव और समाधान, डॉक्टर पवन शेखावत से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। ये आकाशवाणी अलवर है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुरक्षा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार गोडावण संरक्षण के लिए प्रयासरत। और जापान में चल रहे एशियन 26 के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया है। उन्होंने कहा कि साइबर स्पेस में कानूनी सहायता और बाल संरक्षण तंत्र को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री मेघवाल कल हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय ऑनलाइन यौन शोषण की रोकथाम और बाल हितैषी न्याय को मजबूत करना था। श्री मेघवाल ने युवाओं के सामने बढ़ते डिजिटल खतरों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें ऑनलाइन ग्रूमिंग, बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक और प्रौद्योगिकी आधारित शोषण शामिल है।
1: हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। बच्चों के इसी संदर्भ में आर्टिकल 39E और 39F भी उनके संरक्षण, गरिमा तथा विशेष उपायों का संवैधानिक आधार देते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह सुरक्षा केवल कानून की पुस्तक में नहीं, बच्चे के दैनिक जीवन में भी दिखाई दे। आज की थीम के परिप्रेक्ष्य में न्याय की ये यात्रा केवल जजमेंट पर समाप्त नहीं होती, फैसले के आगे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को काउंसलिंग, आवश्यक हेल्थ केयर, शिक्षा की निरंतरता, विक्टिम कंपनसेशन और सुरक्षित रिहेबिलिटेशन से भी जोड़ा जाए।
0: साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने बाल संरक्षण के लिए न्याय की सुगमता के 3 आयाम प्रस्तुत किए। इनमें समझने में सुगमता, सहभागिता में सुगमता और कार्य करने में सुगमता शामिल है। श्री मेघवाल ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नालसा की कानूनी सेवा इकाइयों, टेली लॉ और न्याय बंधु जैसी पहलों के माध्यम से न्याय तक पहुँच को सरल बनाने पर जोर दिया।

0: प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव 4 चरणों में होंगे। 8 अक्टूबर को इसकी लोक सूचना जारी होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर, दूसरे का 29 अक्टूबर, तीसरे का 4 नवंबर और चौथे चरण के वोट 14 नवंबर को डाले जाएंगे। वहीं पंच और सरपंच पदों के लिए 25 और 31 अक्टूबर तथा 6 और 16 नवंबर को मतदान होगा। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मत पत्रों से होंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में जैसलमेर और फलौदी में वोट डाले जाएंगे। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 लाख से अधिक वोटर होने के कारण चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायत चुनाव के लिए कुल 4,03,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनाव के जरिए 1,55,000 जन प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये चुनाव 41 जिला परिषदों और 457 पंचायत समितियों में होंगे। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारने और उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए पाली में आज उद्यमियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा देने के लिए चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य भर के 1,200 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और ऋण सहायता सहित विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान चूड़ी बनाने, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और कुल्हड़ बनाने जैसे विभिन्न उद्योगों की जानकारी दी जाएगी। इससे विभिन्न जिलों के उद्योगों के बीच कारोबारी नेटवर्क मजबूत होगा। नए बाजार के विकास के साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर से चल रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में मेजबान भारत के साथ साथ 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों की वायुसेनाएं अपने अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य कर्मियों के साथ सीधे हिस्सा ले रही हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार यह संयुक्त फॉर्मेशन विभिन्न देशों के बीच आपसी विश्वास, सटीकता, रक्षा और भाईचारे का संदेश है। इस आयोजन का मुख्य संदेश पावर इन पार्टनरशिप यानी साझेदारी में ही शक्ति है। ये युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की दिशा में एक और पहल करते हुए कल जैसलमेर के रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि गोडावण सहित प्रदेश की अनमोल वन्य जीव विरासत सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रूप में पहुंच सकें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि पिछले एक दशक में गोडावण संरक्षण के क्षेत्र में हुई प्रगति आज वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन चुकी है। गोडावण संरक्षण कार्यक्रम की सफलता राज्य सरकार, वैज्ञानिकों, वन विभाग तथा स्थानीय समुदायों की सार्थक कोशिश का नतीजा है। वन तथा पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पक्षी गृह में गोडावणों का प्राकृतिक माहौल में संरक्षण किया जाएगा।
1: अब तक गोडाउन का संरक्षण क्लोज्ड ब्रीडिंग सेंटर में किया जा रहा था। अब इस एवियरी के जरिए उन्हें धीरे धीरे जंगल में वापस बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्राकृतिक परिवेश में छोड़ने के बाद गोडाउनों की गतिविधियों, आवास के इस्तेमाल, व्यवहार और जीवित रहने की क्षमता पर वैज्ञानिक निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सेटेलाइट टैग और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है। गोडाउन को केवल एक दुर्लभ पक्षी ही नहीं बल्कि थार के ग्रासलैंड इकोसिस्टम का प्रमुख संकेतक भी माना जाता है। मनीष, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिन पशु कल्याण मानकों में सुधार करने तथा विलुप्त हो रहे

0: प्राणियों की रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें रखी गई है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा तथा अमानवीय व्यवहार को सामाजिक चेतना विकसित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समारोह नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी। वह तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इन खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस बीच इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रणवी उर्स को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। प्रणवी इस लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बनी हैं। इसके अलावा लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। ये पुरस्कार इस इवेंट में भारत का पहला मेडल जीतने में तीनों की सामूहिक उपलब्धि को सम्मान देने के लिए है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IGPL की ओर से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाल सुरक्षा को राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग बताया। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य पक्षी गोडावण संरक्षण के लिए रामदेवरा में गोडावण पुनर्स्थापन पक्षी गृह का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री और जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 का समापन आज। भारत कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, येन केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज़ से अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

20 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरी लाल कालांतर में बने

शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरे से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

0: सुंदर है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हरियाणा के गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: गाना।
1: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म अनाड़ी।
0: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: बदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

0: शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।
1: बचपन

0: भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
4: भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा, समझे?
5: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
6: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
6: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
6: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
6: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
7: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
9: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
10: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
11: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, अंतराल के बाद सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।
12: खूब मशहूर हुई आज बॉम्बे टॉकीज में। आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
13: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं, और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
14: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
15: तो स्वागत है आपका।
14: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है, जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
15: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
14: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
15: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं

0: ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात का, अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी, ना बड़ों,
1: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
0: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे, करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं, करते करते वक्त बीतता गया। फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का,
1: जी बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी, जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी, कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु, तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया, मोरया गजानना मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे
1: जी।
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी, जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें, सुषमा श्रेष्ठ इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका, उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी, तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही, तो कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे, तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूँगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम ताना ना ना ताना तर तर ये दिल है दीवाना
1: जी।

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सरगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी,
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों के स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो। आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तू तू तू तू तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है,
0: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती
0: हूँ, वो पूर्णिमा ही गा सकती
1: है। ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शियलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया,

0: था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो
0: ये
1: बाल,
0: कुछ है,
1: बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
1: जी, जी।
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: है।
0: तो टेक्सचर एज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी,
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी,
1: प्रोफेशनल
0: प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है तो। जी, तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी, तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती
0: से जी पाती उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन, बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलो पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग की, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी
1: नहीं। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास,
0: शाम है धुआं धुआं।

0: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तु तु तु तु
1: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
0: जी, जी।
1: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बिताए
0: जी,
1: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
0: जी,
1: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी, किसी ना किसी तरह मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
0: बिल्कुल ना? सही कहा।
1: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु

0: तो तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था, वो मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है, तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: करके,
1: जी
0: मैं हूँ गांव की गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: कामयाब
0: रहा।
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो
1: जी
0: मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, कोई माने ना माने। मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके। सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज, लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की
1: हाँ, है। बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर हाँ, का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का

0: मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहाँ आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस से.
1: बिल्कुल सही कहा है ना? आपने. और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी. तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही. और देखिए ना, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है.
0: हाँ, ये एक अजीब बात है. हाँ, कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोवा लोवा. मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया. हाँ, ना तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशंस.
1: हूँ
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ.
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना. हाँ, सुना कितना, तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही बेकार है.
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया. छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते. हाँ, हैं, वो हम पर छोड़ देते.
1: जी, जी, जी.
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन.
1: क्या बात है.
0: तो ये सब हमारे इनपुट्स होते
1: हैं. जी बिल्कुल,
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारे इनपुट्स होते हैं. सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है.
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो IQ है उसका जो है ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा रही है उसे पकड़े. मतलब लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही है ना.
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक ले जाती है.
0: कुदरत कुछ साथ देता है.
1: हाँ,
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम बढ़ाते.
1: तो आप कहें तो यही गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक लिया जाए.
0: प्लीज, प्लीज,
1: हमारे श्रोता भी थिरक लेंगे.
0: प्लीज,
1: तो आइए सुनते हैं.

0: तो कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया? या
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने में गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी, जी,
1: जी। इतना भी किसको मिलता है,
0: बिल्कुल। और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहाँ हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि जी, जी। मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदाकिनी जी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा बिल्कुल, बुरा कभी नहीं सोचेंगे,
0: और उन्होंने सोचा भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत जाती है। बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
0: जी।
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं
0: जी।
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी 2 लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला, कुठला देव बाई पावला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढली ठोका सरा चुकला छो मंतर।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
0: जी।
1: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी, अभी ये 1 साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूँगी। बात वहीं ख़त्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फ़ोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फ़ोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा, मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी, ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है।

0: जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है।
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी?
1: बिल्कुल,
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक।
1: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।
0: किल बिल पक्षी बोलती, झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्नी आले काई, स्वप्नी आले काही, एक मी गाव पाहिला बाई। किल बिल पक्षी बोलती,
1: बहुत सुंदर, क्या बात है।
0: तो मराठी गाने बस, मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा, लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
1: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया। इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
0: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
1: जी, God
0: पर
1: gift.
0: ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है, ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है। ऊंची है बिल्डिंग, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कैसे मैं आऊं, टाड़ा रा रा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
1: अनु मलिक के साथ,
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना, पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया, जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं। अब
0: और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हो,

0: Oh my जानू, I love you. वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं। अब
1: और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
0: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया। और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
1: बेसिक्स बहुत,
0: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी के नहीं, है ना। अब आप बोलोगे कि अरे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोल। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना। तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है,
1: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती ना
1: हो जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती
1: हूँ। आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है।
0: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
0: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
1: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार,
0: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो।
1: जी,
0: हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको
1: करियर जो बनता
0: है, हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश, अगर लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में है।
1: जी है, एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिस्टर लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा तेरी, उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये

0: जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना।

0: बिल्कुल युवा दर्शक होते होंगे हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
1: बिल्कुल
0: पसंद करते।
1: बिल्कुल। और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
0: यही खास
1: स्टेज
0: है
1: पे, यही खास है मेरे लिए तो यही खास है
0: जी।
1: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
0: अच्छा।
1: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी
0: जी।
1: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
0: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
1: प्लीज चने के खेत में।
0: अरे
1: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूम

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन।
2: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे
1: ये आकाशवाणी अलवर का असर इसका चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
7: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
8: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
9: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
8: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
9: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
8: पर रेरा तो शहरों में।
9: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
8: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ जब जसपाल सिंह के स्वर में गूंजती हैं तो सारा वातावरण बहुत ही भक्तिमय हो जाता है और इन चौपाइयों को फिल्मों में बहुत सुंदर तरीके से दर्शकों तक पहुंचाया एक महान संगीतकार ने जिनका नाम है रविंद्र जैन।
1: रविंद्र जैन के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं मनीषा जी कि बचपन में ये मंदिरों में भजन गाया करते थे।
0: जी हाँ, शायद यही वजह थी कि उनकी रचनाओं में भी आध्यात्मिकता की झलक हमें लगातार मिलती है।
1: और इनके आरंभिक गुरु रहे हैं पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम जी।
0: संगीतकार, गायक और गीतकार रविंद्र जैन बहुत अधिक प्रभावित रहे बंगाल से और उनका परिवार भी कलकत्ता जाकर बस गया था 50 के दशक में।
1: जी, और गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से रविंद्र जैन बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रविंद्र संगीत सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी उनकी और इसलिए संगीत के करियर को जो है शुरुआत वहां से हुई है। और पहला गाना एक संगीतकार के रूप में उन्होंने जो कंपोज किया उस संगीत रचना को गाया था मोहम्मद रफी साहब।

0: येसुदास और हेमलता के स्वर में इस मीठे गीत के स्वर रचयिता रविंद्र जैन जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय में है। श्रोताओं, जयंत जी ने इस गीत को सुनने के पहले वादा किया था कि उस रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनवाएंगे, तो आइए सुनते हैं गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन से सुधांशु शेखर की ये बातचीत।
1: मैंने जब संगीत की शिक्षा लेना आरंभ किया
2: जी,
1: तो गायक के तौर पे ही किया, लेकिन गायन के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े नाम थे कि मुझे ये समझ आ गया, जल्दी ही समझ आ गया
2: जी,
1: कि जहाँ तक ये लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक ही जाना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ से आगे की तो बात बहुत दूर है। यानी उस्ताद बड़े गुलामी खान साहब थे, अमीर खान साहब थे, जिन दिनों हम सीखा करते थे
2: जी,
1: और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब, ओंकार नाथ जी, यानी जो जो बड़ी हस्तियाँ उस वक्त सुनने को जिनका हमें गायन मिलता था। तो आज तो ऐसे लोग मैसर ही नहीं हैं, इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि कंपोजिशन के क्षेत्र में कदम रखूं। वहाँ भी बड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत अपनी बात कहने की गुंजाइश है
2: जी। लेकिन आपको गीतकार बनने की कैसे सोची?
1: गीतकार बनना अगर मैं कहूँ कि एक मजबूरी थी, यानी लिटरेचर से तो मुझे बचपन से लगाव है, लेकिन फिल्में जो मैंने गीतकार के रूप में की हैं उनमें यूँ था कि मैं जब बॉम्बे आया तो मेरे पास धुनें होती थी, लोक धुनें थी, क्लासिकल राग तो थे ही सीखे हुए जाने हुए, लेकिन सुनाने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लव्स तो चाहिए ना, शब्दों के बिना उनको क्या समझ आएगा, सिर्फ ट्यून्स अगर सुनाते रहें, और मेरे लिए कोई राइटर उस वक्त जब मेरे पास फिल्में नहीं थी तो कौन लिखता, तो टूटे फूटे जो बोल मैं गाता था वही लोगों ने पसंद कर लिए और उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत सराहा। और कुछ यूँ भी था कि काम जल्दी करके देना होता था
2: जी,
1: तो इन सब बातों के तहत मैं आपके सामने जो कुछ भी हूँ, गीतकार कह लें, शायर कह लें, बस इसी तरह बने।

0: गीत लेखन से भी है कि आमतौर पे जो आजकल ये होता है कि फिल्म की धुने, गाने की धुने पहले बना दी जाती हैं
1: जी,
0: और उसके बाद गीतकार को कहा जाता है कि भाई आप इसमें शब्दों को फिट कर दीजिए
1: जी।
0: तो इसमें से ऐसा नहीं लगता है कि गीतकार की जो अपनी उड़ान है, शब्दों की जो अपनी उड़ान है, वो एक सीमित दायरे में कैद हो जाती है?
1: डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे आप कह रहे हैं। समझिए कि कोई अगर डांस का सीक्वेंस बनाना है, कोई ऐसी फिल्म है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ताल के साथ खेलना है, सुरों के साथ खेलना है, या अलग अलग विविध छंदों में काम करना है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर गीतकार होते हैं वो एक सेट मीटर होता है हम लोगों को कहने का, ठीक है ना
0: जी,
1: गजलों का भी, गीतों का भी, तो उसमें ही ज्यादातर लोग कह के लाते हैं। उसमें विविधता जो है ना वो कम आ पाती है, एक वेरिएशन जो हमें चाहिए होता है वो कई बार नहीं भी मिलता है।
0: अच्छा रविंद्र जी, इन दिनों व्यस्तताएं जो है वो किस क्षेत्र में है, साहित्य में, संगीत में?
1: साहित्य तो चूंकि बचपन से मेरे परिवार से मुझे मिला है, मेरे पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वेद शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और मेरे बड़े भाई साहब श्री धन्य कुमार जी, उन्होंने बहुत साहित्य पे काम किया, तो इन लोगों के सानिध्य से साहित्यिक जो संस्कार हैं वो तो जीवित रखने ही हैं, और मुझे उसमें आनंद भी बहुत आता है। तो साहित्य तो मेरे साथ चल ही रहा है, और संगीत की चूँकि शिक्षा ली है और संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो वो उत्तरदायित्व भी मैं निभाता हूँ। उर्दू की किताब शाया की है कि उसका नाम है उजालों का सिलसिला, उर्दू की गजलें, नज़में, नाज शरीफ, हम इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। हिंदी साहित्य पे काम कर रहा हूँ और कुछ तर्जुमे कर रहा हूँ,
0: अनुवाद काम
1: जी, अनुवाद का काम कर रहा हूँ पर्शियन से सरल उर्दू में।
0: अच्छा, तो आपने इतनी सारी भाषाएं सीखी हैं?
1: बस ये रुचि है मुझे सारी भाषाओं में, मुझे बंगाली मेरी एक वीकनेस है, चूँकि कलकत्ते से मैंने करियर शुरू किया है
0: जी,
1: तो बंगला पे भी बहुत काम करता हूँ,
0: बंगला पे, उर्दू पे
1: जी, जी, जी,
0: हिंदी में कर ही रहे हैं
1: जी जी। हिंदी उर्दू तो हिंदी उर्दू इसलिए कि वो अलीगढ़ में हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है, और अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, और कलकत्ता काफ़ी वक्त गुजारा है, वो ख़ास तौर से बंगाली लिटरेचर के लिए ही मैं गया था और बंगला म्यूज़िक के लिए गया था।
0: तो आपने किसी दक्षिण भारतीय भाषा पे काम नहीं किया है?
1: म्यूज़िक किया है उनके लिए, संगीत किया है, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी किया, उससे पहले अभी यशुदास जी के साथ एक मलयालम फिल्म की थी, अभी कुछ गीत कैसेट बनाए हैं मलयालम के।
0: मलयालम भाषा तो आपको आती नहीं,
1: मगर संगीत किसी जबान का मोहताज नहीं है ना, आप जानते हैं उसकी अपनी जबान है,
0: अपनी भाषा होती है
1: जी।
0: तो आपको उससे कोई कठिनाई नहीं हुई दूसरी भाषा
1: में? उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाए और फिल्म का क्या पस मंजर है वो मालूम हो जाए
0: तो उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होती
1: जी। नहीं
0: रविंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप रामायण के कुछ दोहे या चौपाई सुनाते।
1: रामायण में जो मैंने कुछ कहा है वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। दोहे चौपाई तो बहुत तुलसी जी ने जो कहे हैं सबने पढ़े हैं और सुने हैं, जिस संदर्भ का गीत मैं गाना चाहता हूँ, ये श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में अपना परिचय देते हैं
0: जी
1: सीता माता को कि वे राम जी ने के भेजे हुए दूत हैं, तो एक गीत वहाँ हमने रखा था।

दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूर्य।

जानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, ग्रह त्याग हुए बनवासी,

0: जय राम।
1: अभी हम सुन रहे थे जाने माने गीतकार संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब के साथ सुधांशु शेखर की बातचीत। ये खास रिकॉर्डिंग हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आए थे श्रोताओं।
2: और जयंत जी, रविंद्र जैन जी का एक और बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन जो दूरदर्शन को रहा, एक सीरियल हुआ करता था रामानंद सागर जी का रामायण, उसका संगीत संसार कितना विपुल है वो हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब जब रामायण देखते हैं रविंद्र जैन जी की स्मृतियाँ ताज़ा होने लगती हैं, उनकी आवाज़ हमारे आसपास जैसे एक बहुत ही आध्यात्मिक संसार रचने लगती हैं। रविंद्र जैन जी के स्वर में एक बहुत ही हॉन्टिंग मेलोडी है फिल्म अखियों के झरोखों से। उस गीत को सुनते हैं और एक बार फिर याद करते हैं रविंद्र जैन।

0: रविंद्र जैन जी के स्वर में इस सुंदर रचना को सुनने के बाद स्मृतियों की स्वर मंजूषा जो खुल चुकी है
1: जी,
0: उसके अगले कलाकार जो हैं उनके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
1: वाह, याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।

0: श्रोताओ, जगजीत सिंह एक अमर आवाज, एक अमर गायक, हिंदुस्तानी गजल को विश्व पटल पर पहुंचा दिया जगजीत सिंह साहब ने, और उनकी आवाज वाकई उनके चाहने वालों के जहन दिल में उसी तरह मुनव्वर है, उसी तरह महकती हुई है जिस तरह ये गजल महक रही थी कुछ देर पहले।
1: वही गजल जो पहले मुशायरों में और शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत की बैठकों तक सीमित थी, उसे आम जनता तक पहुंचाया, पूरे भारत में संगीत प्रेमियों में लोकप्रिय कराया, और वो एक ही नाम है, जगजीत सिंह।
0: जगजीत सिंह साहब की याद आते ही न जाने कितनी गजलें, कितने गीत और कितनी ही उनकी लोक धुनों पर जो आधारित गीत हैं वो याद आने लगते हैं, खास तौर पर उनके गाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर पंजाबी गीत।
1: बिल्कुल, और क्यों ना हो, क्योंकि मूलतः जगजीत सिंह साहब पंजाब के थे और उनका जन्म श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। जगजीत सिंह साहब का वास्तविक नाम जगमोहन सिंह धीमान था
0: जी,
1: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो संगीत की शिक्षा आरंभ की तो उनके पहले गुरु रहे हैं पंडित छगनलाल शर्मा जी, और उस्ताद जमाल खान साहब से भी आपने संगीत की तालीम हासिल की।
0: बाकायदा शास्त्रीय संगीत सीखने वाले जगजीत सिंह साहब ने जब सुगम संगीत की गजलों को गाना शुरू किया तो कौन कह सकता था कि ये कलाकार अपने श्रोताओं के दिलों पर, अपने चाहने वालों के दिलों पर सदा राज करते रहेंगे। और न केवल गजलें, बल्कि जगजीत सिंह जी ने अपने करियर के उत्तरार्ध में बहुत सुंदर भजन भी गाए हैं जयंत जी, और उनकी गाए सभी भजन आज तक हम सबके हृदयों पर राज करते हैं। भक्ति रस से परिपूर्ण ये भजन सुनते ही मन जैसे आनंद विभोर हो जाता है। श्रोताओं, आज हम महान गायक जगजीत सिंह साहब की खास रिकॉर्डिंग लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया चित्रा सिंह जी भी थी, और ये विविध भारती की खुशकिस्मती थी कि ये मशहूर गजल गायकों की जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ विविध भारती के स्टूडियोज में पधारी थी, और उनकी उसी रिकॉर्डिंग को हम आज आपके नजर करते हैं। आइए सुने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का ये विशेष साक्षात्कार। इस इंटरव्यू को लिया है विजय चौधरी ने।
2: जगजीत भाई और चित्रा जी, एक सवाल जो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि आप गजल गायकी में पहले आए और उसके बाद में आप संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए, तो इन दोनों में आपको कौन सी अपनी शख्सियत ज्यादा प्यारी है और ज्यादा आप किसे इम्पोर्टेंस देते हैं?
3: ये दोनों चीजें कोई अलग नहीं है, क्योंकि संगीत निर्देशन गजल में भी करना पड़ता है
2: जी,
3: फिल्म में भी करना पड़ता है, तो बेसिक जो चीज है वो है म्यूजिक
2: जी।
3: तो मुझे तो दोनों चीजें प्यारी हैं और दोनों चीजें आती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि गजल ज्यादा प्यारी है या वो ज्यादा प्यारा है, लेकिन क्योंकि गजल से हम ऊपर आए हैं इसलिए
2: जी
3: गजल को हम आगे रखेंगे, संगीत निर्देशन को आप समझ लीजिए कि साइड बिजनेस कह लीजिए।
2: अच्छा अच्छा, ये कहा जाता है कि हमारे भारत में गजलों में जो कॉर्ड का यूज किया है सबसे पहले वो आप ही ने किया, और इसकी वजह क्या है, यानी जो आपने चलन देखा उस वक्त के एतबार से उससे आप प्रभावित हुए या आपने इसकी जरूरत इसको कुछ पहले से अलग दिखाने के लिए समझी?
3: ऐसा है कि देखिए, संगीत जो है म्यूजिक, उसकी तो कोई लैंग्वेज तो कोई है नहीं उसमें,

0: जबान सब मुल्कों की एक ही है
1: जी,
0: संगीत की जबान है वो एक ही जबान है
1: जी।
0: अभी आप जिस कॉर्ड जिसको कहते हैं उसमें तीन नोट्स होते हैं, पासा गा या सागा पा
1: जी,
0: वो हम तीनों एक साथ बजाओ तो उसको कॉर्ड कह देते हैं
1: जी।
0: तो अगर हम पहले धोती पहनते थे, कुर्ते पहनते थे, अब हम पतलून पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो गजल को कॉर्ड क्यों नहीं पहनाया जाए?
1: सही बात,
0: उसको आप क्यों पीछे रखना चाहते हैं?
1: यानी यूं कह लें कि कॉर्ड का कोट क्यों नहीं बनाया
0: जी,
1: यानी जो पाश्चात्य असर है, अब इसके आगे हम चलते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स में ही नहीं, हम देखते हैं कि धुनों में भी भारतीय जमीन पर काबू रखते हुए भी आप लोग कहीं ना कहीं उन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो चाहे या कंपोजिशन में ऐसी बात हो, उसका असर भी तो
0: थोड़ा सा असर है। फिल्मों में ज्यादा असर है
1: जी,
0: वेस्टर्न मेलोडीज का, वेस्टर्न स्टाइल का जो है, लेकिन गजल में मैं समझता हूँ अभी कम है। गजल में सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, लेकिन मेलोडी में आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ वेस्टर्न कॉम्बिनेशन है।
1: अच्छा, और एक चीज अब खास तौर पे मैं चित्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि जबान की जानकारी तो एक जरूरी शर्त है किसी भी तरह के गाने के लिए, लेकिन गजल में कुछ खास सेंसिटिव हुआ करता है मामला, तो इसमें आपका क्योंकि बंगाल से रिश्ता है
2: जी,
1: तो कोई दिक्कत आपको लगी कभी, या जगजीत भाई की वजह से वो दिक्कतें आसान होती चली गई?
2: हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, आती ही नहीं थी जुबान बिल्कुल। गा तो जरूर लेती थी, बचपन से गा लेती थी
1: जी,
2: लेकिन वो सुन सुन के गाना, बगैर समझ के गाना, वो और बात होती है। तो फिर जगजीत जी ने काफी हेल्प, मदद की इस फील्ड में, और धीरे धीरे समझ आने लगा। और अभी भी वैसे खास तो मुझे आती नहीं लैंग्वेज, सच बात तो ये है।
1: अच्छा,
2: तो ये वो तो मेरे बोल से आपको समझ, आप समझ गए होंगे।
1: आप कह रही हैं इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है ऐसा।
2: नहीं, नहीं।
1: हाँ। जी,
2: मैं लेकिन वैसे एक एक गाना गाने से पहले, एक एक गजल कह लीजिए, इतना जरूर करती हूँ कि उस पर्टिकुलर गजल की जितनी मुश्किलात हों, कितने भी मुश्किल वर्ड्स हो जिसके मुझे मीनिंग्स नहीं मालूम, या कुछ भी उसके मतलब हो
1: जी,
2: उस सारी बातें पहले मैं अच्छी तरह से मालूम करके फिर ही गाना शुरू करती हूँ।
1: जी जी, एक इल्ज़ाम अक्सर गाने वालों के ऊपर, गज़ल गाने वालों पर आजकल आता है कि गीत नुमा गज़ल ज़्यादा आजकल गाई जाती है। किस बात की वजह से लोग ये कहते हैं कि ये गीत नुमा गज़ल हो गई है? क्या गज़ल गायकी का भी कोई ख़ास पैटर्न हुआ करता है?
0: ये तो देखिए, अपना अपना ढंग है, अपना अपना नॉलेज है। आपको जितना मसाला आता है, जितना मसाला आप डाल सकते हैं चीज़ में उतना डालिए। बाकी रही गीत और गज़ल, आप एक गज़ल को एक घंटा भी गा सकते हैं, और एक गज़ल को आप तीन चार शेर होते हैं, तीन मिनट में ख़त्म भी हो सकती है
1: जी।
0: उसमें आप एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, एक ही जगह तान मार रहे हैं बार बार, या सरगम बोल रहे हैं बार बार, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपकी जो म्यूजिक की नॉलेज है उसको आप इम्पोज कर रहे हैं ऑडियंस के ऊपर। गजल को पीछे छोड़ के आप अपनी नॉलेज को इम्पोज कर रहे हैं। वो करिए, जरूर करिए, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ है। पहले हम दिल्ली जाते थे, दो दिन में पहुंचते थे, आज आदमी चाहता है कि दो घंटे में दिल्ली पहुंचे
1: जी,
0: क्योंकि इतना वक्त नहीं है, ऑडियंस के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो एक गजल को बैठ के आधा घंटा एक ही गजल सुनेंगे। वो चाहते हैं कि ढाई घंटे का प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 20 गजलें हों
1: जी,
0: डिफरेंट कलाम हो, डिफरेंट शायरों का कलाम हो।
1: अच्छी बात कही आपने, यानी उसकी जगह यहाँ पर दाल में नमक जैसे ज्यादा नहीं।
0: ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना चाहिए, वो कहीं कहीं खूबसूरत लगता है, लेकिन उसका ज्यादा जैसे मिर्ची या नमक डाल दो तो फिर वो बुरा लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा चित्रा जी, गजल गाने में जुगलबंदी भी आप ही लोगों से शुरू हुई, और अगर शुरू न भी हुई हो तो मैं समझता हूँ कि मकबूलियत जो है वो आप लोगों से ही, इस जुगलबंदी को मेल फीमेल दोनों एक साथ एक चीज को गाएं, तो इसमें आप जो जगजीत भाई बंटवारा करते हैं किसी भी गजल में, तो फीमेल एंगल सामने रहता है उस शेर के पीछे जिसको चित्रा जी गाती हैं, और मेल आपके सामने, या किसी भी गजल को आप बांट सकते ही हैं कि ये?
0: किसी भी गजल को नहीं बांटते हम
1: जी।
0: एक तो जैसे चित्रा जी बोल रहे हैं अभी फीमेल एंगल शेयर में हो, दूसरा एक यूनिवर्सल थॉट जिस शेयर में हो जो मेल और फीमेल दोनों पे जाता हो, तो वो मैं अक्सर इनसे गवाता हूँ।
1: अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस आपको खास दिखाई दिए दोनों साथ में अगर कोई चीज गाते हैं तो ऑडियंस के ऊपर?
0: हाँ, एक तो देखिए मोनोटोनी टूट जाती है
1: जी,
0: अगर एक ही आवाज आप सुन रहे हैं तीन घंटे कान में तो वो थोड़ी देर के बाद मोनोटोनस लगती है। तो एक गजल मैंने गाई, उसके बाद एक इन्होंने गाई, तो एक वेरिएशन जो है ना वो कानों को भी मिलता है, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बहुत वाइड हो गई है गजल की, आपको तो मालूम है
1: जी। हाँ जी,
0: पहले तो लोग घरों में ही गजल सुनते थे, या कभी कभार कभी गजल का प्रोग्राम होता था स्टेज पे, उसमें भी 200 या 300 आदमी। अभी जो गजल के प्रोग्राम होते हैं, हम लंदन में गए थे अल्बर्ट हॉल में, तो 6000 आदमी वहाँ हॉल भरा हुआ था। उसके बाद सन सिटी में गए, 7000

0: आदमी हॉल भरा हुआ है, या इंडिया में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में 2500 आदमी, 2000 आदमी, तो इस तरह की ऑडियंस। चंडीगढ़ गए वहाँ 14000 आदमी रोज गार्डन में, तो गजल सुनने आया, वो पीछे 14000 में कुछ सुनने वाले हैं, कुछ ऐसे ही आ गए हैं, कुछ तमाशा देखने आए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ गजल नहीं रहती, वहाँ फिर कई कुछ और भी करना पड़ता है एंटरटेन करने के लिए।
1: जी हाँ जी। अच्छा, गजल के साथ में जब लोग तालियां बजाते हैं ताल के अंदर, तो कैसा लगता है? यानी
0: देखिए, वो एक स्टेज होल्ड करने का जो है तरकीब है, तरकीब यह आती कि वो पार्टिसिपेशन उनकी हो जाती है ऑडियंस की। अगर ऑडियंस की पार्टिसिपेशन शुरू हो गई है, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जम जाएगा।
2: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ये विशेष रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे विजय चौधरी जी। और श्रोताओं, ये हमारे संग्रहालय की खास रिकॉर्डिंग थी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस लाफानी गजल को, जिसे लिखा है निदा फाजली ने, और आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली पेशकश का।

0: मुश्ताक फाजली से अहमद वजी साहब की ये खास बातचीत और उसके संपादित अंश।
1: निदा साहब, इस वक्त मुझे रघुपति साहब फराग गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है कि दिल को तेरी तलाश है वादिये कायनात में, तुझको कहां वो दे सदा, तुझको कहां सदा न दे। और वादिये कायनात की तरह फैला हुआ है हमारे इस प्रोग्राम का दामन, और मैं इस पसोपेश में हूँ, इस उलझन में हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ दूँ और आपसे क्या क्या सवाल करूँ और आपसे क्या क्या पूछूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसत का तकाजा ये है कि आप खुद अपने बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में, अपनी यादों के बारे में, अपने अहबाब के बारे में।
2: एक साथ बहुत सारे सवालात, उन सारे सवालों का जवाब एक शेर। अब जहाँ भी हैं वहीं तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में, और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ

तक लिखो रुदादे सफर, हम तो निकले थे कहीं और ही जाने के लिए। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ, मैं अपने घर में तीसरा बच्चा होने वाला था। मेरी वालिदा एक हादसे का शिकार हो गई, मकान की मरम्मत हो रही थी दिल्ली में और वो छत से मुझे 3 महीने का रखे हुए नीचे गिरने वाली थी। मेरे मामू ने दोनों हाथों में उन्हें थाम लिया, वो बेहोश हो गई और मैं वक्त से पहले इस कायनात में चला आया। जब चला आया बाद में महसूस हुआ, गालिब का शेर याद आया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मैंने अपने बचपन को अभी तक अपने साथ महफूज रखा है, बीती हुई उम्र को। मैंने एक बार झुंझला के कहा भी था कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत चुका है वो गुजर क्यों नहीं जाता। या बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। और जब मेरी बेटी हुई तो मैंने एक नज्म लिखी थी उसके लिए कि बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाएं, फिर गगन में चांद भी कुछ धुंधला धुंधला है, मिटा के इसके सारे दाग धब्बे जगमगाएं, फिर हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पांव फैलाए, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाएं, फिर धमाके कच्ची नींदों से डरा देते हैं बच्चों को, धमाके खत्म करके लोरियों को गुनगुनाएं, फिर वो जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया जो सदियों की अमानत है, जो हम सब की रिवायत है, पुरानी हो चुकी है, इसमें अब थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं दुनिया बच्चों की तरह मुस्कुराए, बहनों की तरह

0: कहानियों का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल मुतवज्जी होता है फिल्मों की तरफ। चूंकि ये फिल्मी सिलसिला ऐसा है कि हर शायर, हर गीतकार, हर लिखने वाला चाहता है कि इनसे वाबस्ता हो, इससे फिल्मों से वाबस्ता हो, और आपकी वाबस्तगी भी इसी फिल्मी दुनिया से है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप अपनी जवानी में, अपने बचपन में या पिछले दिनों में आप किस तरह की फिल्में देखते थे, पसंद करते थे, और फिर किस तरह के गीत आपको पसंद थे, या कौन शायर, कौन गीतकार, किस किस्म के गीत आपकी प्रेरणा का स्रोत बने?
1: देखिए साहब, बिहार में पटना अदीमाबाद के एक शायर हुए हैं शाद अदीमाबादी, उनकी एक लाइन है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि च्वाइस का इख्तियार जिंदगी में होता नहीं है, जहाँ पैदा हो गए वो आपका परिवार, उस परिवार की जो भाषा वो आपकी भाषा, वो परिवार जिस मोहल्ले में वो आपका मोहल्ला, वो मोहल्ला जिस नगर में वो आपका नगर। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जब एक घर छीना गया तो घर की तलाश में पूरे देश में भटकता रहा, ये भी बेवकूफ़ी थी। घर चला गया था कराची और मैं उसे ढूंढ रहा था हिंदुस्तान में। मालूम पड़ा एक पड़ाव बम्बई आया, उस जमाने में धर्मवीर भारती यहाँ पर थे, उनके धर्मयुग में लिखना शुरू कर दिया, फिर बिलिट्स था उसमें लिखना शुरू कर दिया। मालूम पड़ा कि एक दिन बेघर के एक शख्स जिसका नाम

लगाव है, लेकिन न जाने क्यों बस उसी वक्त जब वो आती है कुछ इंतजार की आदत सी हो गई है मुझे, एक अजनबी की जरूरत सी हो गई है मुझे। मेरे बरांडे के आगे ये फूस का छप्पर, गली के मोड़ पे उखड़ा हुआ सा एक पत्थर, ये एक झुकती हुई बदनुमा सी नीम की शाख और उस पे जंगली कबूतर के घोंसले का निशान, ये सारी चीजें कि जैसे मुझ ही में शामिल हैं, मेरे दुखों में, मेरी हर खुशी में शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी यूं ही गुजरती रहे, अदा उनास से लड़के को प्यार करती रहे। तो उसे देखकर सुबह भी अच्छी लगती थी, उसकी खामोशी से दिन भी जागता था, बेमतलब उसका इंतजार करते थे। एक दिन आया कॉलेज में मैं, तो अचानक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मिस टंडन इज नो मोर। वो कॉलेज आते वक्त किसी ट्रक के बीच में आ गई और वो चली गई।

0: कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है।
1: क्या
0: भी
1: बात है,
0: निदा साहब ने ही कहा है मनीषा जी।
1: जी हाँ, और इतनी खूबसूरत बात कहने वाले इस महान शायर को आज हमने याद किया, और हमने याद किया संगीतकार गायक रविंद्र जैन साहब को, साथ ही एक महान गायक जगजीत सिंह भी आज हमारी विविधा की जीनत थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारी विविधा की आज जीनत थी। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वक्त तो दीजिए विविधा के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत आप सभी को मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: ये आकाशवाणी अलवर है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
3: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
4: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आजादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के

0: खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से।
2: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
6: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
7: हेलो, हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
8: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
7: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
8: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
7: पर रेरा तो शहरों में।
8: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
7: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से।

0: ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई जरा देख के चल।

भी ये भाग तरह देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाएं ही नहीं बाएं भी

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी हरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बनना पड़ता है।

0: बड़ा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है। ये भाई, ये भाई, जरा देख के चलो।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो

0: शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: जाती है।
1: आप सुन रहे थे शोले फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सरबद्ध किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। ये प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। पीएम सेतु योजना को आज

एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये योजना पिछले साल 4 अक्टूबर को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। वोकल फॉर लोकल के संकल्प को धरातल पर उतारने और उद्योगों के सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए पाली में आज उद्यमियों का राज्य स्तरीय अधिवेशन होगा। लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित इस अधिवेशन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नई दिशा देने के लिए चर्चा की जाएगी। अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शिरकत करने का कार्यक्रम है। वे उद्यमियों से लघु उद्योगों के विकास के बारे में विमर्श करेंगे। इस अधिवेशन में राज्य भर के 1,200 से अधिक उद्यमी शामिल होंगे। आज विश्व पशु दिवस है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति के संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन का उद्देश्य पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा तथा अमानवीय व्यवहार को सामाजिक चेतना विकसित करना है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें रखी गई है। इसी कड़ी में सामाजिक चेतना के तहत प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं वन्य जीव सप्ताह के तहत सवाई माधोपुर में रणथंबोर बाघ परियोजना की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को स्वच्छता, जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है और निःशुल्क वन भ्रमण करवाया जा रहा है। पाली में मनरेगा के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें कार्यस्थल या जंगलों के पास काम करते समय भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेंडेट स्टार्क नामक पक्षी का आगमन शुरू हो गया है। ये पक्षी उद्यान की छिछली झीलों में लगे पेड़ों पर घोंसला बनाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही पेंडेट स्टार्क ने जोड़े बनाने का भी काम शुरू कर दिया है और कुछ पुराने घोंसलों पर मैटिंग भी कर रहे हैं। केवलादेव उद्यान के एन ब्लॉक तथा वोटिंग एरिया में करीब 250 से अधिक पेंडेट स्टार्क ने डेरा डाल रखा है। इसके अलावा अन्य प्रजाति के पक्षी भी उद्यान में नजर आ रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट से केवलादेव उद्यान की रौनक बढ़ गई। इसे लेकर पर्यावरण और पक्षी प्रेमियों में उत्साह बना हुआ है। प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही कई शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस बार मानसून ने राज्य से 3 दिन की देरी से विदाई ली है। दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कल 6 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि कई जगह पर अल सुबह हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से रात में ठंडक बढ़ गई और न्यूनतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा। नशा मुक्त राजस्थान 2029 अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF ने कल प्रदेश के 6 जिलों में एक साथ कार्रवाई कर नशा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है। ANTF महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर, जालौर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में की गई इन कार्रवाइयों में 424 किलो से अधिक डोडा पोस्त, अफीम, MDMA और MD बरामद किए गए। कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जापान में चल रहे 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक चले इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ कुल 85 पदक जीते।

0: जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल, मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत बॉबी फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की हैं, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

घर की दरों दीवारों की तरफ अगर लौटिए श्रोताओं, उनमें कान लगाकर सुनिए तो शायद यही दुआएं देती हैं दीवारें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। और तमाम जो बातें दीवारों के रहते जो घरों में होती हैं, यानी कभी अपने साथियों के साथ खेलना, कभी बिताया हुआ बचपन, कभी वहाँ की गई पढ़ाइयाँ, तो बहुत सारी यादें हैं और हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारी यादें भी अपनी साझा कर रहे हैं। तो इन यादों को भी आप बांटते चलें कार्यक्रम में तो क्या ही बात है। आई मिलन की बेला इस फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में और सारा बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मात्र एक घर की दास्तान नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की भावना है जो अपने मूल निवास, अपनी जड़ों और अपनों से दूर हो चुका है। भौतिक रूप से भले ही इंसान आगे बढ़ जाए लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उस घर में छूट जाता है जहां उसका बचपन और उसका असली वजूद परवान चढ़ा था। एक और श्रोता ने लिखती हैं, घर छूट सकता है मगर घर की यादें कभी नहीं छूटती। कुछ दीवारें उम्र भर हमारे भीतर खड़ी रहती हैं, याद बनकर, अपनापन बनकर और माता पिता के आंगन की खुशबू बनकर। इन दीवारों ने घर में आती धूप और चांदनी के साथ साथ रिश्तों के बदलते रंग भी देखे हैं। प्यार रूठना मनाना, कहीं शहनाई की गूंज और कहीं विदाई की नमाखें। और इन्होंने ससुराल की भी बातें लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखती हैं कि यादों की दीवारों पर आज भी हैं बचपन के वो निशान, जहां बेफिक्र होकर पाया था मैंने मान। भले ही अब दूर हूं मैं मेरे नए घर संसार में, पर जुड़ा मेरा दिल है मायके के प्यार में। ईंट पत्थर से बद्दा हर मकान है, जहां प्रेम बसे वो घर महान है। थक हार कर जब शाम ढलती है घर की याद दिल में मचलती है। तो कितनी ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं होती बल्कि हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, हंसी आंसुओं और बदलते रिश्तों की चश्मदीद गवाह होती हैं। आज विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में शायद यही बातें हैं। और जी हाँ, बिल्कुल यही बातें हैं। अब एक गीत आपको सुनवाते हैं, उसके कलाकार और गीतकार आपको बताने हैं।

नूतन और देवानंद पर फिल्म आया गया ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और इस गीत के रचनाकार हसरत जयपुरी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो पूरी इबारत चलचित्र की भांति मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गई। बुलाए नहीं भूलती वो बचपन के घर की दीवारें, मात्र 10 फीट ऊंची दीवारें और उस पर टीन का शेड। घर की इसी एक दीवार पर 2 से 20 तक पहाड़े लिखे हुए थे, यानी टेबल्स की बात कर रहे हैं ये, जिन्हें रोज याद करता था। इसके विपरीत दीवार में एक छोटी ताक थी जिस पर लैंप केरोसिन तेल से भरी चिमनी भी रखी रहती थी जिसे शाम को जलाया जाता था। इस रोशनी में शाम को क्लास होमवर्क के साथ पढ़ाई होती थी। इससे आगे वाले छोटे कमरे में अंगीठी पर खाना बनाया जाता था। बचपन के घर की दीवारें भुलाई नहीं भूलती ये दीवारें, बचपन की कितनी यादें अपने आप में समेटी हुई हैं। वक्त के साथ अपने आप यादों के झरोकों से सारी दास्तां बयान कर देती हैं, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब उस घर में हम नहीं रहते, ताला पड़ा हुआ है। यदाकदा समय मिलने पर वहां चला जाता हूँ, कुछ समय वहां अकेला बिताता हूँ। यही मेरा बचपन बीता, स्तब्ध और मूक दीवारें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हैं और बचपन की घटनाओं को चलचित्र की भांति मस्तिष्क में अंकित कर जाती हैं। बचपन के बाद यही जवान हुआ, विवाह भी यहीं से हुआ, पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहीं से हुई, नौकरी वगैरह की भी बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि यादों के दरख्त बन चुकी दहलीज और दीवारों के दर्द बयां करती दमदार इबारत, जिन दहलीज दीवारों के दरमियान कभी बचपन दम भरता था, आज मूक साक्षी को दर्शक बन हसरत भरी नजरों से निहार रहे हैं। दूरियां दीवार ने नहीं दिलों ने बनाई है, दीवार नहीं दिल की दरारों से लुप्त हो चुकी उन अतीत रिश्तों खुशियों को आज भी दिल ढूंढता है, मगर दर्द दिल की ये हसरत दिल में ही दफन हो कराह उठती है। यादों के दर्पण में स्वयं को ढूंढने का ये सफर का बेसब्री और बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक जो चिलमन होती है श्रोताओ, उसे भी हम एक हल्की सी दीवार

मान सकते हैं जो दो लोगों के बीच होती है। यही गीत है और ये गीत किन पर फिल्माया गया ये आपको बताना है। और साथ ही जो हमने आपसे सवाल किए थे कि कुछ यादें जो दीवारों से वाबस्ता हैं आपके पढ़ने की पढ़ाने की, या फिर किसी एक ताक पर रेडियो तो क्या रखा होता था और उसमें विविध भारती से कुछ आवाजें आती थी क्या।

मोहम्मद श्रोताओं ने पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि डिटेल ही लिख दी है इस गीत की, महबूब की मेहंदी फिल्म का ये गीत है और लोकप्रिय और रोमांटिक गाना है ये। एक श्रोता ने लिखा है आनंद बख्शी के बोल हैं और ये गाना एक प्रेमी की उस मीठी बेताबी को दर्शाता है जो अपनी शर्मीली प्रेमिका के चेहरे से हटते हुए पर्दे और बिखरी जुल्फों का दीदार करने के लिए बेचैन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मिट्टी खपरेल वाला वो घर जहां मेरा जन्म हुआ आज भी गांव में सलामत है, साल में एक दो बार जाता हूँ।

ये मैं पूछने भी वाली थी श्रोताओं आपसे कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी अगर कोई यादें आपके साथ हों, यानी गांव के घर, गांव में खासकर देखा जाता था पहले, और अब तो वैसे सब जगह ईंट और सीमेंट की ही पक्की दीवारें हुआ करती हैं, लेकिन आज भी देखने को मिलता है घर भले ही मिट्टी की दीवारों का हो लेकिन जो दिल की दीवारें होती थी वो बड़ी मजबूत होती थी। तो ऐसे घरों की जो यादें हैं वो आप जरूर हमसे ताजा करें। और क्या कभी आप अपने घरों में यानी पुराने घर में कभी लौट कर जाते हैं? अगर जाते हैं तो ये भी हमें जरूर बताएं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो दीवारों पर कुछ ना नजर आए तो अच्छा लगता है। बच्चों को पहले हम न जाने क्या क्या हाथों से बनाते और लगा देते थे, कई तोरण बनाए हर साल दिवाली पर, कुछ नया सा तोरण अब सब बाजार में मिल जाता है पर उसमें वो खुशबू नहीं होती और न ही वो प्यार जो खुद बनाकर लगाने में मिलता है, वो खुशी कहीं खो सी गई है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि जो गीत आज के हैं उनके बारे में लिखा है कि बेमिसाल गीत हो सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब छुपन छुपाई का खेल खेलते थे तब दीवार की तरफ दोनों हाथों के बीच छुप कर मतलब सब छुप जाते होंगे, और कितनी प्यारी यादें इन दीवारों से जुड़ी हैं। आज वो सब तो नहीं पर हाँ काफी अपनी तो लगती हैं ये दीवारें। जी हाँ जरूर होती हैं अपनी। एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, उनमें हमारी पूरी जिंदगी बसती है, बचपन की शरारतें, माँ बाबा की आवाजें, हंसी आंसू, त्योहार और ना जाने कितनी यादें। घर छूट जाता है मगर उन दीवारों में बसा बचपन दिल से कभी जाता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे खूबसूरत संदेश हमारे पास आए हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप तक इन बातों को पहुंचाया जाए। वैसे शादी ब्याह की भी बड़ी सारी यादें होती हैं, वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं और कलाकार।

देवर फिल्म का ये गीत था शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें भी कितनी खास होती हैं, इन्हीं के बीच हमारा बचपन हंसता है, रिश्ते पलते हैं और जाने कितनी यादें चुपचाप बस जाती हैं, घर से दूर हो जाएं तो भी उन दीवारों में बसा अपना संसार दिल से कहां दूर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी लगता है बिछड़ना सिर्फ इंसानों से नहीं जगहों से भी होता है जहां हमने अपने हिस्से का समय जिया है। घर की सीढ़ी, छत का वो कोना, आंगन की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। आप श्रोताओं, आपने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। कुछ एक घर का कोना होता है जिसमें रेडियो की भी बड़ी सारी यादें होती हैं। क्या आपके घर में भी रेडियो था? क्योंकि उस समय रेडियो बड़ा खास हुआ करता था और साइकिलें भी बड़ी खास होती थी जो लोग एक दूसरे को दिया लिया भी करते थे। ऐसी कुछ यादें हो तो आप ताजा कीजिए। लिखते हैं आगे की दीवार, बरामदे की वो कुर्सी और लेस लगी वो कवर कुर्सी, खिड़की, ये सभी हमारे भीतर बस जाते हैं। जब हम उस जगह पर लौटते हैं तो लगता है कि ये सभी हमारा राज जानते हैं और हमें हमारी राह दिखाते हैं। होगा शायद ये कुछ बताने के लिए, कुछ बिसरी यादों को जानने समझने के लिए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने घर बिहार आज भी बड़ी शिद्दत से जाता हूँ। कुछ ज्यादा दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है जैसे आंगन हमसे रूठ गया हो और पूछ रहा हो इस बार इतने ज्यादा दिन क्यों लगा दिए। जब वहां पहुंचता हूं तो लगता है दीवारें मुस्कुराने लगी हों, आंगन में बहारें थम सी गई हों। और इनका और भी संदेश आप तक पहुंचाएंगे श्रोताओं, सुनवाते हैं ये गीत।

घर की दीवारों के साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की पुरकशिश आवाजें थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन है। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहाँ हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक खास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा खास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहाँ आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे। एक तो ये सवाल आपको बताना है और आज विश्व पशु दिवस भी है, तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था, तो आप हमसे जरूर ये बातें ताज़ा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी जरूरत पड़ती थी, ना ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा, ये पंखा नहीं होता था, और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी, वो वही काम करती थी।

शुदा, इस फिल्म को आपको पहचानना है और गीतकार बताने हैं। इस बड़े ही मकबूल गीत के गीतकार का नाम आपको बताना है, आप बता दें तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि हमारे जीवन के सबसे मासूम और खूबसूरत दिनों की गवाह होती हैं ये दीवारें। जब बचपन में भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई का खेल होता था तो इन्हीं दीवारों के एक कोने या अलमारी के ओट में छुपने की महफूज जगह होती थी। वक्त के साथ आदमी भले बड़ा हो जाता है, बड़े हो जाते बचपन में जो दीवारों पर बनाई गई आड़ी तिरछी लाइनें, जो लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी, और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा रेडियो रखा रहता था, नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना, तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो खेलते थे, तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर, बड़ा मजा आता था। उन दिनों की आज याद पूरी ताजा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहां बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहां पानी की बूंदें भीगती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपट कर

ये गीता श्रोताओ गंगा मैया तो है पेरी चढ़े हुए इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और कुमकुम नजर आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है, सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी जरूरी है जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा हो जाता था, रेडियो से जुड़े बचपन की वो दिन जो है वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था, बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं वो चावल को भिगोकर उसमें जो सफ़ेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो

ये प्रिय सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं, और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओं, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था, या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया, पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठकर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है, उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको जरूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे जरूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुंचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और इस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद है जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने जमीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल की हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहां भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर

तथा वहां पर तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला, तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया, तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो,

0: कि देश के संस्थानों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at the India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
3: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
4: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
3: दक्षिण पूर्व एशिया

0: के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यहूनेट हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
3: हूती विद्रोहियों के दियात पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तईस और तूर अलबहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: ने कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
1: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैकड़ों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाश दीप इस फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

विके आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तरफ।

0: श्री रामचंद्र की तर्ज साहिल दहानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

मंच आहे गीत आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मंच आहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मन चाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अंबाला कैंट हरियाणा से रतन लाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की ये फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता हर्ष, राधे, पारस, पूजा, रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी डी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा पंचारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी, नमस्कार शंकर जय किशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूरे मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचनगांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं। इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था। और यही थी श्रोताओं मन चाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मन चाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मन चाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।

जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं

0: मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या क्या कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं।
1: अनाम भैया वो आनंद सुनाओ ना।
0: हाँ हाँ जरूर सुनाऊंगा रितु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहां से लाए?
1: ये वायलिन, ये वायलिन।
2: बेटे अनाव, कहां जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: है, इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है तो क्या मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच, मुझे तुम याद आ गई माँ।
2: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
3: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े। एक दिन की बात है।
4: अनाम, अनाम।
1: क्या बात है माँ?
2: अनाम, मिस्टर बत्रा ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें अपने नाटक में लेना चाहते हैं।
1: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
2: जानते हैं, जानते हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
1: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
2: नहीं, अकेले ही जाना।
1: क्यों?
2: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
1: मगर क्यों माँ?
2: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा? आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
1: अच्छा नहीं रहा माँ।
2: क्यों?
1: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
2: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
1: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।

0: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
1: ये बचपना छोड़वाना, इस तरह नहीं कहा करते। मिस्टर पट्टा बहुत अच्छे आदमी हैं।
0: होंगे मगर
1: अनाम।
0: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगे तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया। बस इतनी सी बात थी।
1: अना, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
0: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती। वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस, यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना। हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस बस, ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं।

0: कुछ तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
0: आखिर क्यों?
2: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
0: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छा आदमी जरूर है अनाम।
2: नहीं मां, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकालकर फेंक दो।
2: बुरा मत मानो मां, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर मां मेरे लिए संसार का अर्थ ही मां है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मां, तुम का मतलब होगा संसार को खो देना।
1: और मां अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी मां अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
0: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले हैं। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है,

0: लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
1: क्या कहते श्री बत्रा, या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं है,
0: अनाथ बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
2: न मां कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं।
1: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, मां और बत्रा, बत्रा और मां। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर मां के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, मां कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। मां कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
3: अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा,
4: चल उठ
3: उठ कर हाथ मुंह धो,
4: हाथ मुंह धोकर
3: नाश्ता कर, चल
4: उठ चल।
3: नाटक कर
4: कर
3: नाटक कर,
4: अच्छा
3: अभिनय कर, चल तू उत्सव तू हंस खुलकर हंस, बाजा बजा वायलिन बजा,
4: बस बंद कर
3: अब बंद कर,
4: चल
3: कहना मान
4: आज्ञा
3: मत डाल, खुश रह
4: मासूम मत रह,
3: खुलकर दो
4: खुलकर दो
3: खुलकर दो। अकेले ही जाना
4: चाहिए,
3: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए बॉय नहीं आई, मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
5: अनाम
3: के लिए बॉय नहीं
5: आई। अनाम, अनाम, क्या हुआ बेटे, क्या तुम डर गए थे? सपनों डरो मत बेटा, डरो मत।
2: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना ना बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
1: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
1: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
1: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया मैं चलती हूँ।
2: अनाम, अनाम, अनाम।
0: हाँ?
2: ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
2: मेरी बात टालोगे तो नहीं?

0: क्या बात,
1: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम्हारा? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
1: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
1: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
2: अनाम की मां अब मिसेस बत्रा हो जाती हैं।

0: अनाम, दिन भर से कहाँ गायब थे?
1: बाहर था।
0: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गायब थे?
1: शहर में घूम रहा था।
0: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारागर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
1: बस करो माँ।
0: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
1: ठीक है।
0: क्या ठीक है?
1: आगे से ख्याल रखूंगा।
0: कहाँ जा रहे हो?
1: सोने के लिए।
0: खाना तो खा लो।
1: भूख नहीं है।
0: ठीक है, जाओ।
2: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: मां को मां कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है, अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था मां का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। तीन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
0: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है अनाम घर छोड़ के चला गया। कल रात को यह नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए अनाम को यहां से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूं। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली, पास हो गया है।
0: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट घंटे पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन ऊब उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गईं, पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात?
2: वायलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
0: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
0: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है।

0: रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। दो एक बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे?
1: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
2: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
1: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
0: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
3: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
0: कहाँ है उत्तर?
4: कहाँ है उत्तर?
3: कहाँ है उत्तर?
5: अनाम भैया।
0: हाँ रितु।
5: वायलिन सुनाओ ना।
0: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगे, है ना?
5: हाँ हाँ चलो।

0: सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।
1: किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान हैं, वो भी इसी के साथ हैं।
0: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के मां बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।

0: ना।
1: अनाम भैया
2: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे दो दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक, नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ, ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है, आपने 13 साल की

0: उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
1: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
1: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इटसेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
1: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह।
1: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
1: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
1: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
1: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
1: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
1: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ।

0: म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है,
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू कव्वाल जो थे उन्होंने
1: जी,
0: दी
1: जी।
0: और वहां से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में, तमाम प्रदेशों में,
0: कोई भी भाषा हो अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहां के म्यूजिकटर जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो,
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हजार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन काल में इतना काम,
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था।
1: वाह वाह,
0: और 17,000 रुपए का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में।
1: जी जी,
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग
1: जी।
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हजार रुपए कर्जा था।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि
1: काम तो कर ही रहे थे।
0: तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए
1: जी।
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी।
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया
1: जी।
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया
1: जी।
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टर है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक डायरेक्टर,
0: इस इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी,
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे
1: जी। ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं, लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का, जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगल जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है
1: जी।
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मनोरी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ
1: जी,
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे।
1: नोटेशन
0: लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशन
0: और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो में
0: जी,
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी,
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है
1: जी।
0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया,

0: मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी,
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब। और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह।
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं वहां लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद, इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहाँ पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनी जी की,
0: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटास्टिक अरेंजर, फैंटास्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजल का रूप रंग ही चेंज कर दिया। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज टोटली कंपोज बाय मास्टर जी। मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक। सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ। एक दफा सुना ये कहाँ पे आ रहा है जी? यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज के म्यूजिक कैसा लगेगा वहां। ओके, टेक करो,
1: क्या बात है।
0: तो म्यूजिक एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया? प्रशांत साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे होते हैं
1: जी जी जी।
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए। सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता। हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्ट्रेस हो, वो अलग बात है। अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने गाना बनाया
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया। मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता।
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया।
1: अच्छा,
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ।
1: ओके,
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है।
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है। और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ। जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा। अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन एवरीथिंग वॉज डन बाय मी, म्यूजिक अरेंजमेंट से लेकर म्यूजिक बजवाना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद फाइनल मिक्सिंग तक आई एम देयर।
1: यानी इंट्रोडक्शन म्यूजिक में मान लीजिए कि गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी, जी।
1: हॉर्न की आवाज आती है,

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी।
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट।
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है। बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी।
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ आई
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो स्वयं सुन।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के नए सबके साथ और सबके साथ, बसंत देसाई के साथ
1: जी।
0: फिर पाटी जी थे जिन्होंने काम किया कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मीनारायण प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम लोगों
0: भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया। तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ ऐसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था, 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम उनके साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनका। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहे, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे, तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया, फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: दिया।
1: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
2: जी।
1: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
2: अच्छा,
1: कार में? हाँ जी, 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था। तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे। बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
2: अरे
1: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
2: ये कौन सा गाना था?
1: ये मुझे याद नहीं।
2: अरे
1: लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया
2: जी जी।
1: तो बोलते ये तो ठीक है। तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। उत्तम यही गड़बड़ है।
2: अरे
1: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
2: अरे बाप रे बाप।
1: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया। मैं कही ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
2: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
1: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है
2: जी,
1: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है।
2: और ये कॉपी नहीं कर रहे,
1: इसके लिए परेशान। किसी की कॉपी हो गई गलती से तो वो

0: निकल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं, लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया
0: जी।
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो रिजर्व के ही बुलाया था उन्होंने।
1: अच्छा।
0: लेकिन हो नहीं सका
1: जी। सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे
1: जी।
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी
1: डैडी,
0: डैडी ने 500 रुपए की या 450 रुपए की मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था।
1: अच्छा।
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली, हेराल्ड गाड़ी थी,
1: हेराल्ड
0: जोत से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मेरे को तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका, मैंने कहा अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहता अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसे। मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे। ये जो आशीर्वाद है
1: जी,
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप
1: जी। जी,
0: आशीर्वाद आपको लेना पड़ता है
1: जी,
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी,
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है,
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया
1: जी, और लगातार साथ रहा,
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए
1: जी,
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ
1: जी जी जी।
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: जी मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामती बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे सुबह 9 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा काम, चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो होता है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरी जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सैक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमृत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत
0: 9। गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी,
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें तो इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो बजा, आप वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
0: क्या बात है?
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी जी,
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन,

0: कोरोना गलती करती के बी एन, तो ये के बी एन कुछ 4-5 महीने से चल रहा,
1: एक जुमला बन गया था,
0: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से कि वायरल वाले की गलती हो गई,
1: ओ
0: और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया, ही स्टार्टेड शाउटिंग, काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। जब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ केवीएन केवीएन केवीएन, आशा जी का गलती हुई थी केवीएन, भूपे जी की गलती हुई थी केवीएन, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
1: क्या बात है,
0: ही लाइक अ फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम आई एम सॉरी।
1: वाह,
0: फिर मैंने कहा केवीएन। सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
1: जी जी जी।
0: तो ये सोलोस जो है वो तो है, अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
1: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए ले जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
1: हाँ।
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
1: जलपरी वाला
0: वायलिन सोलो का पीस था।
1: अच्छा,
0: सागर फिल्म।
1: जी।
0: तो जो वो कमलासन बजाता है।
1: अच्छा अच्छा, वो जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
1: जी जी जी।
0: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये जो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
1: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते।
1: जी।
0: इतना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
1: जी जी।
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, तुम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस, तो ठीक।

0: जी
1: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहां खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी आशा जी वगैरह सब वहां उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई कि उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू ट्रंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
0: स्नैप आ जाए
1: तू हाथ से करना,
0: जी
1: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये मैंने ना
0: जी
1: अभी
0: हाँ
1: ये साउंड है,
0: जी
1: ये चाहिए, तार टूट गई।
0: हाँ
1: तो की दो तीन रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है
0: हाँ
1: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
0: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
1: नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ हाँ।
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है, तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं म्यूजिक बनाता मुझे समझ में आया, वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
2: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा।
3: हाँ जी वादा।
4: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
5: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
4: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
4: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
6: ओ मैन।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फुलवा।

छोड़ो मोबाइल, छोड़ो स्क्रीन का जाल, मम्मी पापा के साथ चलो, मचाएं धमाल। कभी खेले लूडो, कभी खेले कैरम बोर्ड, हंसी खुशी से जीतेंगे हम यादों की हर होड़। खिलौने तो बाजार में मिल जाते हैं सारे, पर मम्मी पापा का साथ ही है सबसे प्यारा, वो है सबसे प्यारे। कार्यक्रम के शुरुआत में तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे बाल दोस्तों को उनकी रेडियो दीदी शिल्पा का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आप सभी मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चों को वीडियो गेम खेलना, मोबाइल देखना या कार्टून देखना पसंद है? मुझे पता है लगभग सभी का जवाब होगा हाँ। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपके मम्मी पापा अपने ऑफिस के काम में, दुकान पर या किचन में बिजी होते हैं ना, और आप अपने होमवर्क में या टीवी में बिजी हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि मम्मी पापा सिर्फ डांटने के लिए या पढ़ाई के लिए ही बोलते हैं। पर बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मम्मी पापा भी कभी आपकी तरह छोटे बच्चे थे? वो भी आपकी तरह छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेलते थे, कंचे खेलते थे, बारिश में कागज की नाव चलाते थे और खूब मस्ती करते थे। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उनका वो बचपन पीछे छूट गया, वो कहीं खो गया है उनके बिजी शेड्यूल के कारण। बच्चों, आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ। जब आप घर पर हों और आपके मम्मी पापा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हों, तो आपको मम्मी पापा का हाथ पकड़कर उनसे कहना है, मम्मी पापा आज कोई काम नहीं, आज कोई मोबाइल नहीं, आज मेरे दोस्त बन जाओ, चलो मेरे साथ कैरम या लूडो या कोई भी गेम खेलो। बच्चों सोचो, जब पापा आपके साथ खेलते खेलते हार जाएंगे या मम्मी कैरम में चीटिंग करेंगे तो कितना मजा आएगा। जब आप उनके साथ मिलकर किचन में बिना गैस के नो फ्लेम सैंडविच बनाओगे या लिविंग रूम में तकियों का एक छोटा सा किला बनाओगे, तो वो पल बच्चों आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। मम्मी पापा दिन भर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वो थक जाते हैं, लेकिन जब आप प्यार से उनका हाथ पकड़कर कहोगे कि चलो थोड़ा सा फन करते हैं, तो उनकी सारी थकान छूमंतर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बाल दोस्तों, आज से आपको अपने मम्मी पापा को अपने बचपन का बेस्ट फ्रेंड बनाना है।

ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ मस्ती भी करेंगे, जीवन का सबक भी सिखाएंगे और उनके पास ही है आपकी सारे परेशानियों प्रॉब्लम्स के तालों की चाबी। हमेशा याद रखिए, असली मजा मोबाइल की स्क्रीन में नहीं है, असली मजा तो मम्मी पापा के साथ मिलकर जोर से हंसने में है। तो मेरे प्यारे सुपर हीरोज, मम्मी पापा को बनाए अपना प्ले पार्टनर। बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं उनसे भी इतना ही कहना चाहूंगी कि आज परिवार स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ऐसे में साथ में बिताया गया फन टाइम बच्चों में सुरक्षा की भावना जगाता है, उनका तनाव कम करता है और माता पिता के साथ बच्चों के कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे बिना डरे बिना झिझके आपसे अपने मन की बात कर पाएंगे, अपनी समस्याएं आपके साथ शेयर कर पाएंगे। आज का दौर बदल चुका है, हम एक ऐसे डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां एक ही सोफे पर बैठकर भी परिवार के लोग एक दूसरे से दूर हैं। सभी पेरेंट्स को एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चों के पास खिलौने गैजेट्स तो बहुत हैं, पर उनके साथ खेलने वाला वो बचपन का साथी यानी उनके मम्मी पापा कहीं पीछे छूट रहे हैं। आज सभी पेरेंट्स को समझना होगा कि हमारे बच्चों को महंगे गैजेट्स या आलिशान होटलों की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है बस आपके थोड़े वक्त की और आपकी एक जादुई मुस्कान की। अक्सर बड़े कहते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो क्यों ना इस बचपन को और भी यादगार बनाया जाए। क्यों ना हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा हो जहाँ कोई मोबाइल ना हो, कोई टीवी ना हो, बस आपके पेरेंट्स की कहानियां हो, बच्चों की नादानियां हो और साथ हो दोनों का। अंत में मैं बस सभी पेरेंट्स और बच्चों से इतना ही कहूंगी कि महंगे खिलौने तो बाजार में मिल जाते हैं जनाब, महंगे खिलौने तो बाजार में मिल जाते हैं जनाब, पर वो बचपन की यादें वो सिर्फ मम्मी पापा के साथ ही सच पाती हैं। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत मस्ती कीजिए और पेरेंट्स आप भी बच्चों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए और सुनिए साथ साथ ये प्यारा सा गीत।

0: silence, silence.
1: वो तो है स्कूल का टीचर हरदम जो चिल्लाए, क्यों बच्चों ठीक है ना?
2: नो सर, नो सर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर.
0: क्या कहा?

0: बच्चों, अब आपको सुनवाते हैं बच्चों के मुख से इसके अंतर्गत कविता पाठ।
1: आज हमारे साथ स्टूडियो में एक प्यारी सी बच्ची आई है। बेटा, क्या नाम है आपका?
2: समायरा।
1: आज आप कौन सी कविता हमें सुनाओगे?
2: सबसे पहले।
1: सुनाओ हमें कविता सबसे पहले।
2: आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फैलाकर चहक चहक कर उड़ना फर फर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे। आज उठा मैं सबसे पहले सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहरे।
1: इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है?
2: हमें सुबह जल्दी उठकर प्रकृति की सुंदरता देखनी चाहिए।
1: हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। हमें कैसे उठना चाहिए? सुबह हम सभी बच्चों को जल्दी उठना चाहिए और प्रकृति की खूबसूरती देखनी चाहिए।
0: बच्चों, क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि उन चमकते तारों के पार क्या है? वहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ ना कोई जमीन है ना हवा, वहाँ रॉकेट से जाना पड़ता है और हम हवा में तैर सकते हैं। वो दुनिया है अंतरिक्ष की दुनिया। इसी अद्भुत दुनिया को समझने के लिए बच्चों हम मनाते हैं 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। आज से ठीक 69 साल पहले 4 अक्टूबर 1957 को इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजा था जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इसी ऐतिहासिक शुरुआत की याद में बच्चों हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक पूरी दुनिया में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन बच्चों, इस अद्भुत दुनिया तक हम पहुंचते कैसे हैं? हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, पर हमारे पास है रॉकेट। और इसलिए इस साल विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की बहुत ही खास थीम है रॉकेट रिवॉल्यूशन यानी रॉकेट क्रांति। क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़ा और अनोखा बदलाव। पहले के समय में बच्चों अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा और सिर्फ गिने चुने देशों का काम होता था। एक बार रॉकेट ऊपर गया तो वह नष्ट हो जाता था। लेकिन आज एक रॉकेट रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब हमारे पास रीयूजेबल रॉकेट है यानी ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस धरती पर सुरक्षित उतर जाते हैं। बच्चों, इस रॉकेट क्रांति में हमारा भारत देश और हमारे स्पेस एजेंसी इसरो भी किसी से पीछे नहीं है। आपको पता ही होगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया है और अब हम इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आज हम आपको बताते हैं अंतरिक्ष की दुनिया के कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में। अंतरिक्ष पूरी तरह साइलेंट है। वहां कितना भी बड़ा धमाका हो जाए किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को यात्रा करने के लिए हवा की जरूरत होती है जो अंतरिक्ष में है ही नहीं। बच्चों, अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी है जो पूरी तरह हीरो से बना हो सकता है। इसके अलावा शनि सैटर्न और बृहस्पति जुपिटर जैसे ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है, क्योंकि बच्चों इन ग्रहों के वायुमंडल में बहुत अधिक कार्बन और तेज दबाव होता है। जब वहां बिजली चमकती है तो हवा में मौजूद कार्बन ग्रेफाइट बनकर गिरने लगता है और दबाव के कारण रास्ते में ही चमकते सख्त हीरो में बदल जाता है। और इसके अलावा बच्चों, जब कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में कुछ महीने बिताता है तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी लंबाई लगभग 2 इंच तक बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण हमारी रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ दबाकर रखता है, लेकिन अंतरिक्ष में खिंचाव न होने के कारण रीढ़ की हड्डी थोड़ी

फैल जाती है, जिससे इंसान लंबा दिखने लगता है। हालांकि धरती पर वापस आने के बाद कुछ समय के बाद उसकी लंबाई फिर से सामान्य हो जाती है। इसके अलावा बच्चों और भी आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ इंसानों का घर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है। यह अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है, जहां वैज्ञानिक रहकर रिसर्च करते हैं। यह आकार में फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। बच्चों आप सभी जानते होंगे कि हमारा सौरमंडल बना है 8 ग्रहों से, बुध मरकरी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है शुक्र वीनस। यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी इकलौता ग्रह जहां जीवन है। मंगल मार्स इसे कहते हैं लाल ग्रह। बृहस्पति जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह। शनि सैटर्न यह अपने शानदार और विशाल रिंग्स के लिए जाना जाता है। अरुण यूरेनस यह एक अत्यधिक झुका हुआ बर्फीला गैस दानव है। वरुण नेपच्यून नीला बर्फीला और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। प्यारे बाल सखाओं, अभी रोकते हैं अंतरिक्ष की यात्रा इस उम्मीद के साथ कि आप में से कुछ बच्चे नए वैज्ञानिक इंजीनियर या अंतरिक्ष यात्री बनकर इस परंपरा को, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल सुनते हैं एक और गीत।

0: क्या गड़बड़ कर दी, मैं चल क्यों नहीं रहा?
1: एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना, इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे
5: और छोटी ये तुम्हारे ना,
6: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम। और दादी
6: हाँ
5: आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
7: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: बच्चों अब ले चलते हैं आपको कहानी की दुनिया में। रोहन नाम का एक 8 साल का लड़का था। वह बहुत होशियार और क्रिएटिव था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह दिन भर मोबाइल की स्क्रीन से चिपका रहता था। चाहे खाना खाना हो, सोकर उठना हो या पढ़ाई करनी हो, उसे हर वक्त फोन चाहिए था। उसके मम्मी पापा उसे समझा कर थक चुके थे। एक शाम जब रोहन अपने फोन में गेम खेल रहा था, तभी स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी चमकी और फोन में से एक छोटा सा रोबोटिक एल्फी बाहर आ गया। रोहन अपनी आंखें मलता रह गया। उसने आंखें मलकर देखा। एल्फी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन तुम्हें स्क्रीन की दुनिया बहुत पसंद है ना, चलो आज मैं तुम्हें इस स्क्रीन के अंदर की असली दुनिया में ले चलता हूँ। एल्फी ने रोहन का हाथ पकड़ा।

0: और दोनों फोन के अंदर चले गए। रोहन एक बहुत ही रंग बिरंगी और चमकदार दुनिया में पहुंच गया। वहां चॉकलेट के पेड़ थे, उड़ने वाली कारें थी और बड़े बड़े वीडियो गेम के कैरेक्टर घूम रहे थे। रोहन बहुत खुश हुआ। वह दौड़ दौड़ कर कभी गेम खेलता तो कभी कार्टून कैरेक्टर्स के साथ डांस करता। लेकिन कुछ ही देर में रोहन को एहसास हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ थी। उसने एक सेब के पेड़ से सेब तोड़कर खाया, पर उसमें कोई स्वाद नहीं था। वह एक डिजिटल सेब था। उसने एक बिल्ली के बच्चे को सहलाना चाहा, पर वह उसे महसूस ही नहीं कर पाया क्योंकि वह सिर्फ एक होलोग्राम था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस पूरी जादुई दुनिया में कोई भी असली हवा या सूरज की गर्माहट नहीं थी। वहां सब कुछ सुंदर था, पर सब बेजान था। तभी रोहन को दूर से हंसने की आवाज आई। उसने देखा कि स्क्रीन के बाहर उसकी खिड़की के बाहर उसके दोस्त पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, तितलियों के पीछे भाग रहे थे और मिट्टी के घर बना रहे थे। उनके चेहरों पर जो असली खुशी और पसीना था, वह इस स्क्रीन की जादुई दुनिया में कहीं नहीं था। रोहन ने एल्फी से कहा, मुझे वापस जाना है। यह स्क्रीन की दुनिया बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और बेजान है। मैं असली दुनिया में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, फूलों को सूंघना चाहता हूँ और अपनी मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना खाना चाहता हूँ। एल्फी मुस्कुराया और उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक झटके के साथ रोहन अपने कमरे में आ गया। उसके हाथ में फोन था, लेकिन बच्चों इस बार रोहन ने खुद ही फोन बंद करके टेबल पर रख दिया। वह तुरंत दौड़कर पार्क में दोस्तों के साथ खेलने चला गया। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल मोबाइल की दुनिया हो, टीवी की दुनिया हो, मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन वह कभी भी हमारी असली दुनिया, असली दोस्तों और असली अनुभवों की जगह नहीं ले सकती। असली मजा और सेहत बाहर की दुनिया में जीने और खेलने में ही आता है। इसलिए डिजिटल दुनिया से दूर रहिए और पार्क में खेलिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए। जीवन के इसी संदेश के साथ आपको सुनवाते हैं बच्चों एक और प्यारा सा गीत।
1: एक था राजा, एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। उस दिन राजा का मन चाहा, चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े से सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
2: क्या कहता जा रहा था?

0: पलक के जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तूफा बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
0: तो अब राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ?
0: चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम।
2: बच्चों, स्टूडियो की घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं आपसे ले लूं जाने की अनुमति। जाने से पहले बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, हमेशा अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, अपनी बातें उनसे शेयर करें, अच्छे से करें पढ़ाई। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दीदी शिल्पा को जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे फुलवारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM एंड 103.1 MHz पर। शाम के 5:30 बजे हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके पद या उसकी दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी बातों और उसके व्यवहार से होती है। इंसान की जबान उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। वे क्या कहता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ये है कि वे अपनी कही हुई बात पर कितना कायम रहता है। जबान का पक्का होना केवल वादा निभाने की बात नहीं होती, बल्कि ये इंसान के चरित्र, उसके संस्कार और उसकी विश्वसनीय को दर्शाता है। जब कोई इंसान किसी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मुश्किल समय आने पर भी उसके साथ खड़ा रहता है, तो वो केवल अपना वादा पूरा नहीं कर रहा होता, बल्कि सामने वाले के साथ विश्वास की इज्जत कर रहा होता है। आज के समय में हम बहुत आसानी से कह देते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे लिए ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, जबकि सामने वाला उन्हीं शब्दों को अपना सहारा और भरोसा मान लेता है। इसलिए अपनी जबान से निकले शब्दों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, समय निकल जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान का भरोसा खो दिया जाए तो उसे दोबारा हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जबान का पक्का इंसान वो नहीं होता जो हर बात पर हाँ कह दे, बल्कि वो होता है जो बोलने से पहले सोचता है और बोलने के बाद अपनी बात की जिम्मेदारी उठाता है। अगर आप किसी परिस्थिति में अपनी कही हुई बात पर पूरी करना संभव ना हो, तो बहाना बनाने या चुपचाप पीछे हट जाने के बजाय सामने वाले से सच कहने का साहस रखता है, क्योंकि कभी कभी साफ शब्दों में नहीं कह देना झूठा वादा करने से कहीं बेहतर होता है। इंसान की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसने कितने बड़े बड़े वादे किए हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने छोटे छोटे वादों को कितनी ईमानदारी से निभाया। शायद इसीलिए आज भी उस इंसान की समाज में अलग पहचान होती है, जिसके बारे में लोग कह सकें कि इस व्यक्ति ने जो कह दिया वो करके दिखाएगा। ऐसी जबान इंसान को केवल भरोसामंद नहीं बनाती, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी मजबूती पैदा करती है जिसे लोग महसूस करते हैं। इसलिए जीवन में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जबान और हमारा कर्म एक दूसरे से अलग ना हो। हम जो कहें उसे निभाने की कोशिश करें, और अगर नहीं निभा सकते तो कहने से भी पहले सोच लें, क्योंकि आखिरकार इंसान की आवाज़ नहीं उसकी बात की विश्वसनीयता बोलती है, और जब लोग आपके शब्दों पर बिना किसी

देह के भरोसा करने लगे, तब समझिए कि आपने अपने व्यक्तित्व की सबसे खूबसूरत पहचान बना ली है। एक ऐसी पहचान जिसमें आपकी जुबान ही आपका वचन है और आपका वचन ही आपका चरित्र है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं एक गीत और फिर बढ़ेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक पर।

साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारी सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, उसी अनुपात में सड़क दुर्घटनाएं और असामाजिक तत्व भी बढ़े हैं। ऐसे में तकनीक ने हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा हमें दिया है, जिसे हम डैशबोर्ड कैमरा या डैश कैम के नाम से जानते हैं। तो आइए आज तसल्ली से बात करते हैं कि कार में डैश कैम लगवाना महज एक शौक है या आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत। दोस्तों, रेडियो के माध्यम से मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसे हादसे के बारे में सुना है या झेला है जहां गलती दूसरे की हो, लेकिन भीड़ या पुलिस के सामने ये साबित करना मुश्किल हो गया हो कि कसूर किसका था। यहीं पर डैश कैम हमारे लिए एक मसीहा बनकर सामने आता है। जब गाड़ी में डैश कैम लगा होता है तो सड़क पर होने वाली हर एक घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो रही होती है। कल को अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको किसी की गवाही के मोहताज रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डैश कैम की वो छोटी सी

फुटेज अदालत और पुलिस के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। ये एक ऐसा डिजिटल सबूत है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। दूसरा बड़ा पहलू ये है इंश्योरेंस क्लेम का। हम सब जानते हैं कि गाड़ी का बीमा करवाना कितना महंगा और कागजी प्रक्रिया से भरा हुआ काम होता है, और जब गाड़ी ठुक जाती है तो बीमा कंपनियों के चक्कर काटने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर आपके कार में डैश कैम लगा है तो आपके पास दुर्घटना का वीडियो प्रूफ है, तो बीमा कंपनियों के लिए भी दावे को पास करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी कंपनी आपके क्लेम को आसानी से खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास अपनी बेगुनाही का एक पक्का सबूत होता है। इससे आपका मानसिक तनाव और समय दोनों बचते हैं। दोस्तों, आजकल सड़कों पर रोड रेज यानी गुस्से में मारपीट और जबरन झगड़े के मामले बहुत आम हो गए हैं। कई बार लोग जानबूझकर गाड़ी के आगे आकर गिरने का नाटक करते हैं ताकि बाद में आपसे पैसे ऐंठे जा सकें। ऐसे धोखेबाजों और जालसाजों से बचने के लिए डैश कैम किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। जब शराबी या मनचले किस्म के लोग दिखते हैं कि सामने गाड़ी पर डैश कैम लगा हुआ है, तो वे खुद ब खुद दूरी बना लेते हैं। वे जानते हैं कि कैमरे के सामने उनकी चालबाजी नहीं चलने वाली। दोस्तों, सिर्फ चलते समय ही नहीं, बल्कि जब आप अपनी गाड़ी को किसी मॉल, बाजार या अपने घर के बाहर कहीं पार्किंग में खड़े करके चले जाते हैं, तब भी डैश कैम अपना काम करता रहता है। कई मॉडर्न डैश कैम में पार्किंग मोड होता है जो गाड़ी के बंद होने के बाद भी मोशन डिटेक्ट करते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। पर अगर आपकी गाड़ी को कोई साइड से खरोंच कर निकल जाए या चोरी करने की कोशिश करे, तो उसका चेहरा और गाड़ी का नंबर कैमरे में कैद हो जाएगा। दोस्तों, इन तमाम बातों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि कार में डैश कैम लगाना केवल एक लग्जरी या दिखावा नहीं होता, बल्कि ये आज के समय में एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि डैश कैम लगवाने में पैसे खर्च होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि आपकी और आपके परिवार की जान और आपकी गाड़ी की सुरक्षा उन कुछ रुपयों से ज्यादा कीमती नहीं है। डैश कैम पर किए गए खर्च कोई खर्च नहीं, बल्कि आपके भविष्य का एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे आज के अगले गीत पर और फिर आएंगे हमारे अगले टॉपिक पर।

दोस्तों, सफर चाहे छोटा हो या लंबा हो, ट्रेन का सफर हम सबको बेहद पसंद होता है। खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़, चाय की गर्म चुस्की और अपनों के साथ हंसी मजाक, रेलवे यात्रा की कुछ और ही है बात। लेकिन इस सुहाने सफर में कई बार ऐसी आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं कि जब हमें ट्रेन को रोकना पड़ता है, और यहीं पर बात आती है चैन पुलिंग यानी अलार्म चैन खींचने की। तो आज के इस अंक में हम विस्तार से बात करेंगे कि ट्रेन की चैन खींचने के नियम कानून क्या होते हैं, इसका सही इस्तेमाल कब करना चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल करने पर सजा क्या मिलती है। दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेन में दी गई ये जंजीर यानी अलार्म चेन यात्रियों की सुविधा के लिए है, जैसे बस की घंटी की जहां मन किया रोक ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन की खींचने की कोई आम अधिकार नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से एक आपातकालीन व्यवस्था है, एमरजेंसी सिस्टम। ये ट्रेन का ब्रेक नहीं है, बल्कि ये गार्ड और ड्राइवर को ये संदेश देने का जरिया है कि ट्रेन या यात्रियों पर कोई गंभीर संकट आ गया है और गाड़ी को तुरंत रोकना जरूरी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में चैन खींचना कानूनन सही है। रेलवे अधिनियम, रेलवे एक्ट के तहत कुछ खास और आपातकालीन स्थितियों में ही चैन खींचने की अनुमति दी जाती है। सबसे पहला, दुर्घटना या आग लगने पर। यदि ट्रेन में आग लग जाए, किसी डिब्बे में शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरा, यात्री गिरने पर। यदि चलती ट्रेन से कोई सहयात्री नीचे गिर जाए या प्लेटफॉर्म पर छूट जाए और उसका बड़ा सामान या बच्चा अंदर फंसा रह जाए। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति। सफर के दौरान यदि अगर कोई किसी बुजुर्ग, बच्चे या यात्री की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर की मदद की आवश्यकता हो। अपराध या हमला। यदि ट्रेन के अंदर कोई आपराधिक घटना, चोरी, लूटपाट या किसी यात्री पर हमला हो जाए तो भी चैन खींचकर ट्रेन रोकी जाती है। बिना वैध कारण के चैन खींचने पर कुछ सजाएं होती हैं। अब जरा इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी इसका अगर गलत इस्तेमाल होता है तो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए चैन खींच देते हैं क्योंकि उनका स्टेशन आ गया हो और ट्रेन रुकने वाली है, या उनका कोई साथी लेट हो गया, या फिर वे गलत ट्रेन में चढ़ गए। साथियों, कानूनी की नजर में ये एक संज्ञेय अपराध है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना किसी ठोस और पर्याप्त कारण के अलार्म चैन खींचना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए

पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, इसलिए इसके लिए 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिना वजह ट्रेन रुकने के पीछे आ रही अन्य ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ जाता है, जिससे रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान होता है और हजारों अन्य यात्रियों की कीमती समय बर्बाद होता है। तो आप भी आगे से कभी भी ऐसा ना करें कि कभी बिना बिना वजह आपको ट्रेन की चैन खींचनी पड़े, और इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। आइए

कीमती समय बर्बाद होता है। तो आप भी आगे से कभी भी ऐसा ना करें कि कभी बिना बिना वजह आपको ट्रेन की चैन खींचनी पड़े, और इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का हमारा गीत।

उभरती है। लेकिन आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता। असली आजादी तब मिलती है जब हम विचारों के स्तर पर, व्यवस्थाओं के स्तर पर और अपनी सोच के स्तर पर हर एक की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, औपनिवेशक मानसिकता, मतलब कॉलोनियल माइंडसेट। कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति और केंद्र सरकार द्वारा उसके तरफ क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, आइए मिलकर समझें कि कैसे सरकार से सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को और उन प्रतीकों को बदला जा रहा है जो हमारी मातृभूमि में हीन भावना का एहसास कराते थे। दोस्तों, लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश पर सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे कानूनों और हमारी जीवन शैली में ऐसा बीज बो दिया था जिससे हम ही अपनी ही संस्कृति को भूलकर वेस्टर्न तौर तरीकों को ऊंचा मानने लगे थे। अंग्रेजों ने जो कानून और नियम बनाए थे उनका उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण रखना और उनका शोषण करना था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से पंच प्राण का आह्वान करते हुए स्पष्ट किया था कि यदि भारत को एक विकसित और महान राष्ट्र बनाना है तो हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, पूरी तरह उनसे मुक्ति पानी होगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव लाए, नए आपराधिक कानून बनाए। सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया कि हमारी न्याय प्रणाली में अंग्रेजों ने के जमाने से चले आ रहे तीन मुख्य कानून, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पूरी तरह से अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जिनका मकसद नागरिकों को दबाना और दंड देना था। केंद्र सरकार ने इन औपनिवेशक कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उनकी जगह तीन नए कानून लागू किए, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन नए कानूनों की मूल भावना दंडात्मक प्यूनिटिव और की बजाय न्याय जस्टिस देना था। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त सजा का प्रावधान है और आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, साथ ही केंद्र सरकार ने गुलामी के प्रतीकों और नामों में परिवर्तन किए। गुलामी की मानसिकता सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे शहरों की सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों के नामों में भी रची बसी थी। सरकार ने एक एक करके इन प्रतीकों को बदला। कर्तव्य पथ, दिल्ली का वो राजपथ जिसे कब पर कभी ब्रिटिश वायसराय और उनके नामुंदे शान से चलाते थे, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये हमें राजा महाराजाओं या शासकों की नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। नेताजी की प्रतिमा, इंडिया गेट के पास गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति खड़ी थी, उसे हटाकर वहां हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। नौसेना का नया ध्वज, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के ध्वज पर अंग्रेजों के समय का सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान बना हुआ था। केंद्र सरकार ने उसे हटाकर हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना की प्रेरणा से एक नया गौरवशाली स्वदेशी ध्वज अपनाया। दोस्तों, यही नहीं, केंद्र सरकार ने और भी बहुत सारे नियम लिए जो कि प्राशनिक और सांस्कृतिक सुधार थे। दोस्तों, क्यों ना हम भी अपने देश की तरफ झुकाव बढ़ाएं और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे जहन में तिरंगा झंडा, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और एक स्वतंत्र देश की तस्वीर

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन

0: देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: बुलबुल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: अभी युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 MHz पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि यह क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज

0: काम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी तथा 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिखे जाएंगे। शाम 7:00 ग्राम भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:30। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15। समाचार संध्या रात्रि 9:45 और 9:00 अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कल की सभा में सवेरे 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिए किए जाएंगे। वंदनवार कार्यक्रम होगा सवेरे 6:05 पर। 6:30 पर झरोका का कार्यक्रम होगा। रामचरितमानस गान आप सुन पाएंगे सवेरे 6:35 पर। संगीत सरिता 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार अलवर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सवेरे 7 बजे। सवेरे 7:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सवेरे 8 बजे। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सवेरे 8:15 पर। सवेरे 8:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1386वां भाग प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सवेरे 9 बजे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। सवेरे 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:45 पर विविध भारती के कार्यक्रम होंगे।

कल शाम 5 बजे बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कल के कार्यक्रम में बहनें सुन पाएंगी चर्चा माँ से माँ तक अनुभवों की आवाज, साथ ही जानकारी दिलवाई जाएगी विश्व शिक्षक दिवस पर। शाम 5:30 बजे युवाणी कार्यक्रम होगा। 6 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से लिखे जाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 पर।

कामचोर फिल्म के लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। गीत को इंदिवर ने लिखा था, संगीत राजेश रोशन का था।

ये गीत है कभी खुशी कभी गम फिल्म से, आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, सोनू निगम और उदित नारायण की।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लेके जाएंगे।

0: बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला आधी दाढ़ी करा ले।

0: दूसरा, अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से। ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया। एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई तथा स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के समक्षेत्र में दो नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पाली में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित उद्यमी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने छोटे उद्यमियों, कारीगरों और व्यापारियों को नई ऊर्जा दी है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमियों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों और कृषि उत्पादों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं।

0: कि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम में सांसद मदन राठौड़ और पीपी चौधरी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क के सम क्षेत्र में दो नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन पक्षियों को छोड़ा। इस अवसर पर वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। श्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में मदद मिलेगी। श्री यादव ने कहा कि लुप्त प्राय पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है।
2: ये आज दो गोडावन मेल छोड़े गए हैं, पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाए। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम में और रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सेप्टेम्बर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोडावन इस जगह की शान है।
1: आज विश्व पशु दिवस है। ये दिवस पशु संरक्षण से प्रकृति की संतुलन तक सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन का उद्देश्य पशु कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके साथ होने वाली क्रूरता, उपेक्षा और अमानवीय व्यवहार को कम करना है। इस वर्ष की थीम उनकी नजरों से दुनिया देखे रखी गई है। पशु दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश में लोगों से पशुओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके प्रति करुणा भाव बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। पशु दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर वन्य जीव सप्ताह के तहत सवाईमाधोपुर में रणथंभौर बाघ परियोजना की ओर से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और विद्यार्थियों को निःशुल्क वन भ्रमण करवाया जा रहा है। वहीं पाली में मनरेगा के तहत काम कर रही महिला श्रमिकों के लिए विशेष जागरूकता सत्र रखा गया। इस दौरान उन्हें कार्यस्थल या जंगलों के पास काम करते समय जरूरी सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ये योजना पिछले साल आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शहरी नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेवा सेतु अभियान 2026 आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्राधिकरण परिसर में नागरिक सेवा केंद्र में जोन वार सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहरी नागरिकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ उनसे संबंधित प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 साल से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले

0: छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। इसीलिए ऐसे मामलों के समाधान की सफलता दर 71.79% रही है। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इसे मुख्य रूप से माल और सेवा कर जीएसटी के रूप में लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किए गए इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य देश भर में फैले कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनाना था। एक रिपोर्ट।
1: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग की विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान परियोजनाओं पर अमल से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने इन खेलों में इस बार 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4th स्थान हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा, देश के संस्थानों, एमएसएमई और स्टार्टअप की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क के सम क्षेत्र में 2 नर गोडावण को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। देश में अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। और एशियाई खेल 2026 का आज जापान के नागोया में आधिकारिक समापन, पदक तालिका में भारत 4th स्थान पर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से सीकर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। नगर निकाय चुनाव 2026 में सीकर नगर परिषद की नव निर्वाचित सभापति खतीजा बानो ने पिछले दिनों सभापति पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परिषद में नई जनप्रतिनिधि व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर सभापति ने कहा कि शहर का समग्र और संतुलित विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था उनकी प्राथमिकता रहेगी। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में पंचायत समितिवार मतगणना कक्ष निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में

0: काफी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों सीकर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा जनसभा को संबोधित किया। अपने प्रवास में श्री शर्मा ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले में आंगन मिलन सेवा का आयोजन रखा गया। अजीतगढ़ और दिवराला सेक्टर के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर ये कार्यक्रम हुए। इसमें महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 गर्भवती महिलाओं को पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म पूरी कर उन्हें पोषण किट वितरित किए गए। साथ ही आंगनबाड़ी से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली 16 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। अभियान के तहत महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। कार्यक्रम में श्री खर्रा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की देखरेख करने के साथ साथ समाज की खुशहाली, पोषण और संस्कार निर्माण की सबसे मजबूत बुनियाद है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत बीते दिनों सफाई मित्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद सभागार में हुए इस समारोह में सफाई मित्रों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता कार्य के दौरान आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने सफाई मित्रों से संवाद कर उनके कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की। आयुक्त ने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में सफाई मित्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना नगर परिषद की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र और आरआर सेंटर में कार्यरत महिलाओं से भी संवाद किया गया। जिले में मानसिक स्वास्थ्य माह के तहत जिला कारागृह में कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, तनाव प्रबंधन के उपाय बताना तथा सकारात्मक सोच और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान मन दर्पण 2 के तहत विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन लोक संस्कृति, कला और विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए। रामगढ़ फतेहपुर स्थित जगदीश मंदिर में मांगणियार, कालबेलिया और रोबिला सहित विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। जिला संग्रहालय में कच्ची घोड़ी, कठपुतली शो तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए श्री कल्याण स्कूल के 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 7 अक्टूबर तक सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। इसके साथ ही सीकर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहली आजरी खास खास खबरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया देश रा संस्थाना एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट नेशनल पार्क रा सम खेतर माए दो नर गोडावण ने प्राकृतिक आवास माए छोड़िया। देश माए हाल ताए आयोजित 16 पेंशन अदालता माए 20,676 शिकायतों रो मौका माथे ही हल काढ़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन। पदक तालिका माए भारत चौथी ठोड़ माथे रियो।

समाचार अरे सागे, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कया के देश राज संस्थाना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप री मजबूती सु ही विकसित भारत बनेला। नई दिल्ली माए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रा 58वां स्थापना दिवस जलसा माए वे कया के निवेशक रो विश्वास हासिल कर ही देश तरक्की कर सके।

0: श्री राधाकृष्णन कया के देश में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने बढ़ावो देवा में संस्थान रो योगदान सराहनीय रियो है। इन वास्ते ओ टिकाऊ विकास रा हल्का में वैश्विक मानक स्थापित करियो है। वणा विश्वास जतायो के आत्मनिर्भर भारत बनाबा में संस्थानारी कोशिशा सु भारत दुनियारी सबू बड़ी माली व्यवस्था बन सके है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पाली माए लघु उद्योग भारती री कानियों राख्या उद्यमी सम्मेलन माए भाग लीना। इन मौके वे कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री दूरदर्शी अगुवाई माए मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जेड़ा अभियान छोटा उद्यमिया कारीगरा और व्यापारिया ने नई ऊर्जा दी है। वे कया के महा का स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक बाजार ताई पूग रिया है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमियासु कया के वे राजस्थान माए मुहैया स्थानीय संसाधना और कृषि उत्पाद माथे आधारित प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर बाखातर आगे आवे। वे कया के देशरी अर्थव्यवस्था ने बढ़ावो देबा माए MSME री महताऊ योगदान है।
1: देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में MSME क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, निर्यात बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लघु मध्यम सूक्ष्म उद्यम को विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने छोटे उद्योगों के लिए कई नवाचार किए हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सुगम रास्ता मिल सके। हमने पंच गौरव के माध्यम से हर जिले के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और इस पर हम प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम माए सांसद मदन राठौर पीपी चौधरी समेत बड़ी संख्या माए उद्यमी मौजूद रिया। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेर माए डेजर्ट नेशनल पार्क रा सम हल्का माए दो नर गोडावन पक्षी छोड़िया। इन मौके वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रिया। श्री यादव खबर नवेसासु बातचीत माए कया के या उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और कर्मचारियों री एक दशक री मेहनत रो नतीजो है। वे कया के पक्षियां ने जंगल माए छोड़बाजु वारा संरक्षण माए लाभ मिलेला। श्री यादव कया के खत्म होता पक्षियां ने बचाबा खातर सरकार खास कोशिश कर रही है।
2: ये आज दो गोडावन मेल छोड़े गए हैं पर ये अभी शुरुआत हुई। अभी पहले उनके पूरे बिहेवियर को, क्योंकि तो पहली बार वाइल्ड में गए हैं, बिहेवियर को, पैटर्न को, फूड हैबिट को, हैबिटेट में एडजस्टमेंट को, इसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो और बर्ड्स हैं उनको समय समय पर छोड़ा जाएगा। 2022 से 2026 के बीच में राजस्थान में हमने जंप स्टार्ट के काफी प्रयोग सफल करे। जंप स्टार्ट का ये जो एक प्रयोग है हमारा गुजरात में भी सक्सेसफुल हुआ है। जैसे हमने दो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सम में और रामदेवरा में बनाए हैं, ऐसे ही पिछले सितंबर में मैं कच्छ के पास नलिया में कंजर्वेशन सेंटर का मैं उद्घाटन करके आया था। गोडावन इस जगह की शान है।
0: आज विश्व पशु दिवस है। ओ दिवस पशुआ ने बचाबा सु प्रकृति रो संतुलन बनियो रहवे है ओ संदेश देवे है। इन दिन रो लगस पशु कल्याण रिकानी जाग जगाबा और वारे सागे वैरी जोर जबरदस्ती और बुरा व्यवहार रिकानी सामाजिक चेतना बनानो है। इन बरस री थीम उनकी नजरों से दुनिया देखें राखी गई है। इन मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया संदेश माए लोगा सु जिनावरा ने बचाबा बढ़ावा और मारी कानी दया और प्रेम रो भाव राखबा ने कया। पशु दिवस मासे प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम राखिया गया। वठी ने वन्य जीव सप्ताह रे तहत सवाई माधोपुर मा रणथंबोर बाघ परियोजना री कानियों जागरूकता गतिविधियां राखी गई और विद्यार्थियों ने निःशुल्क वन भ्रमण करवायो जा रियो है। पाली माए मनरेगा रे तहत काम करी महिला मजूर खातर जागरूकता सत्र राख्यो गयो। इन दौरान वाने काम री ठोड़ और जंगला रे कने काम करती टेम जरूरी सुरक्षा उपायों री जानकारी दी गई। पीएम सेतु योजना ने आज एक बरस पूरो वैग्यो है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय री आ योजना लारला बरस आज ही रे दिन शुरू हुई ही। इनरो लगस ITI ने आधुनिक और उद्योगारी जरूरतारे मुजब तैयार करनो है। योजना रे तहत ITI में प्रशिक्षण सुविधावा ने बेहतर बनायो जा रियो है। सागे ही मोटियारा ने

0: रोजगार खातर जरूरी व्यवहारिक कौशल देबा माथे जोर दियो जा रियो है। पीएम सेतु योजना खातर कुल 60,000 करोड़ रुपया सो बत्तर प्रावधान करियो गयो है। राज्य सरकारी कानून शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवा वारो तुरंत लाभ मुहैया कराबारा लगत सु सेवा सेतु अभियान 2026 राख्यो जा रियो है। अभियान रे तहत जयपुर विकास प्राधिकरण रिकानी सु 7 से 16 अक्टूबर ताई प्राधिकरण परिसर माए नागरिक सेवा केंद्र माए जोनवार सेवा शिविर राख्या जावेला। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन बताया कि इन अभियान रो उद्देश्य शहरी नागरिका ने न्यारी न्यारी सेवा वा मुहैया करा बारे सागे उनसो जुड़िया मुद्दा रा मौका माथे निस्तारण पक्को करनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह काल नई दिल्ली माए 17वीं पेंशन अदालतरी अगुवाई करेला। इन दौरान 80 बरस सो 32 उम्र रा सुपर सीनियर पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोग्यारी 849 लंबा टेमरी शिकायत रो हल काड़ियो जावेला। डॉक्टर सिंह इन बरस 13 महीने राखी 16वीं पेंशन अदालतरी सफलतारी गाथावा ने उजागर करबावाला छोटा पोस्टर जारी करेला। इन मौके पारिवारिक पेंशन भोग्या सु जुड़िया मुद्दा माथे अक्सर पूछा जाबावाला सवाल और उत्तर वाली किताब रो विमोचन भी करियो जावेला। मंत्रालय बतायो के 2017 में शुरू होबारे पाछे हाल ताई आयोजित 16 पेंशन अदालता माए कुल 28,797 शिकायत माए सु 20,676 शिकायत रो मौका माथे ही हल काड़ियो गयो है। इन खातर इन भात्रा मामला रा समाधान री सफलतारी दर 71.79% रही। एक देश एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स केंद्र सरकारी महत्वाकांक्षी कर नीति और सुधार है। इनने खास रूप में माल और सेवा कर जीएसटी रा रूप में लागू करियो गयो है। 1 जुलाई 2017 ने पूरा देश में लागू करिया गया। इन टैक्स रो खास लगस देश भर में फैलिया कई अप्रत्यक्ष कराने खत्म कर एक समान और एकीकृत कर प्रणाली बनानो है। एक रिपोर्ट।
1: जीएसटी से पहले केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर थे, इसके कारण राज्यों के बीच व्यापार करना जटिल था। जीएसटी के बाद अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक कर दिया गया। अब पूरे देश में एक ही सामान या सेवा पर समान दर लागू होती है। जीएसटी प्रणाली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी जो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। एसजीएसटी जो राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर वसूला जाता है। वहीं आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। जीएसटी लागू होने से कर ढांचे के आसान होने के साथ साथ सारा काम ऑनलाइन होने से कर चोरी में काफी कमी आई है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के कारण चालू वित्त वर्ष में कर संग्रह में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने में सकल जीएसटी संग्रह 12,46,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11.6% ज्यादा है। जीएसटी के कारण जहां कई वस्तुओं की लागत घटी है, वहीं पूरा भारत अब एकीकृत बाजार बन गया है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: एशियाई खेल 2026 रो जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन बैग्यो। इन दौरान खिलाड़ी मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेल रा मेजबान कतर ने सौंपिया गया। समापन समारोह माए निशानेबाजी माए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत पावाली नीरू ढांडा ध्वज वाहक रा रूप माए भारतीय दल री अगुवाई करी। भारत खेला माए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य पदक समेत 85 पदक सागे अंक तालिका माए चौथी ठोड़ माथे रियो। और अब आखिर माए खास खबरां एक और फेरू। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का या देश रा संस्थान एमएसएमई और स्टार्टअप री मजबूती सो ही विकसित भारत रो निर्माण वेला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज जैसलमेरा डेजर्ट पार्क रा सम खेतर माए 2 नर गोडावण ने प्राकृतिक आवास माए छोड़िया। देश माए हाल ताए आयोजित 16 पेंशन अदालता माए 20,676 शिकायतारो मौका माथे हल काड़ियो गयो। और एशियाई खेल 2026 रो आज जापान रा नागोया माए आधिकारिक समापन। पदक तालिका माए भारत चौथी ठोड़ मात है रियो। इंड्रेस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 8 ही पूरे भी हो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुबह 9 बजे

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। अब ग्राम भारती कार्यक्रम जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: पहला आधी दाढ़ी करा ले
2: और दूसरा,
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं और अब ग्रामीण भाई बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना? कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: ग्राम भारती कार्यक्रम ने सुनवाला सगला बहना भाइया बुजुर्गा ने रेणु रो राम राम सा, और आपड़े सागे है अश्विनी भाई राम राम सा।
5: बिल्कुल रेणु जी, थाने भी घणो घणो राम राम, और सुनवाला सगला कर सब है ने घनी घनी राम राम।
4: सब जाना हा कि बेजवान जानवर बोल को नहीं पावे अश्विनी भाई, इके अलावा बाने काई तकलीफ हो रही है, आपा महसूस कोन पर पावा, वे केवल महसूस कर सके है, वे बोल को नहीं पावे। और आपने राजस्थानी संस्कृति माए जीव दया ने सबसे बड़ो मान्यो जावे है, गाया ने तो माता को दर्जो भी दियो जावे है, और आपने पंचा ने चुग्गो नागबो अपनी परंपरा रो हिस्सो मान्यो जावे है। इके अलावा कहावत भी है, जीव दया ही सबसे बड़ो धर्म है, और अपना राजस्थान री माटी अर ढाणी ढाणी माए पशु पक्षियां सु प्रेम रो अनोखो संदेश दियो गयो है। तो जानो हो अश्विनी भाई, अस हर साल आपा 4 अक्टूबर ने पूरी दुनिया में विश्व पशु दिवस मनावा हां।
5: बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी बात बताया। और देखो, थे शुरुआत अगर पशुओं से करया छे तो आज छे 4 अक्टूबर और विश्व पशु दिवस, आज के दिन आप बड़ी धूमधाम से मनावा छा, और अपना देश में ही कोने आप पूरा विश्व में मनावा छा। और इस दिन को मुख्य उद्देश्य थे बताया कि प्रति प्रेम दया करुणा संवेदनशीलता भावना विकसित करवो, और साथ में बाकी अधिकारों संरक्षण कल्याण के प्रति लोगों ने जागरूक करनो भी चाहिए। यानी पशु प्रकृति का कई प्रकार का अंगाम है, जहाँ पृथ्वी माले जीवन को एक संतुलन बनाए रखवा में पशु पक्षियों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी मानी गई है। यानी मनुष्य और पशुओं को संबंध अभी को कौन है, प्राचीन काल से चलो आ रही है। पशु मानव जीवन, कृषि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है हरदमी। इले पशुओं की रक्षा करबो केवल अपनो नैतिक कर्तव्य को न, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक मान्य हुए
4: जी। सही कियो अश्विनी भाई, लेकिन आज भी आपड़े पशु पक्षियों पर बहुत सारो संकट है, आज भी जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आपा जाना हाँ, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा विकास की दौड़ में चल रहा है। जी के माए आपड़ा जो बेजवान जानवर और पंछी है बड़ा दुखी हो रहा है। जी हाँ, मैं बताऊं, आज चरागाह की कमी होती जा रही है, मकाना और कारखाना की वजह से खेती

0: और जो जंगल रो दायरो है वो धीरे धीरे काई होते जा रहे हो घटते जा रहे हो जी के जानवर क्या होता जा रहे हैं बेघर होता जा रहे हैं। इसके अलावा आज ते जानो प्लास्टिक रो कचरो आज शहरा माए आपा काई करा हाँ फेंक दे हाँ कचरो बिसू प्लास्टिक गाय भैंसा खा जावे है और जी की आंतड़िया बाकी बंद हो जावे और बाकी मौत हो जावे है। तो आज भी जानवरा ने बहुत सो संकट को सामनो करनो पड़ रहे हैं। इसके अलावा गाड़िया रो एक्सीडेंट भी हो जावे जानो सड़का में घूमता आवारा जानवर और तेज गाड़िया री टक्कर बाने चोटिल कर जावे। और एक और हो रियो है कि पानी री कमी है बाके लिए अश्विनी भाई आज पंछी जो है तरस तरस कर मर जावे है बिना पानी। तो आज जागरूकता बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल यानी थे अभी बताया कि आंखे प्रति पशुआ के प्रति क्रूरता और प्रमुख समस्या तो बहुत सारी है
0: जी जी।
1: और देखो वर्तमान समय में पशुआ के कई प्रकार की समस्या को सामना करना भी पड़ रहे हैं। बताया कि अवैसी कार तस्करी प्राकृतिक आवासों को विनाश प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आपने पशुआ के लिए प्रति क्रूरता प्रमुख माने गए थे
0: जी जी जी।
1: और देखो आंखों संरक्षण आपा यानी देखभाल कर रहा जी आपा आपने देखभाल कर रहा जी आपा अगर पशुआ की देखभाल कर रहा तो आपने सागे सागे प्रति प्रकृति के सागे सागे प्रति करने एक संतुलन बढ़ावो भी आंखों जो मान रखे गए
0: थे। सही कह रहे हो अश्विनी भाई इसके लिए आपा ने बहुत सारा काम करना चाहे जी जी। पानी का परिंडा गो गास ने आपने गवा ने गाय की रोटी देवा बने चुग्गो देवा और घायल जीवारी अगर आपा रक्षा करा तो आज को वो दिन बड़ो ही सफल हो जावे। तो आपने प्रण लेनो चाहिए आज के दिन किसान भाई बहना ने सभी श्रोताओं ने ये बात के लिए संकल्प लेनो चाहिए।
1: बिल्कुल देखो 4 अक्टूबर को दिन विश्व पशु दिवस है और आपा मनाओ भी जा जानकारी के सागे सागे सुना एक सीमा मिश्रा को प्यारो सो गीत
0: हाँ सुनाओ सा

0: सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार
0: खेत

0: पौधे और बीजोपचार
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम
0: अपना कर उन्नत तकनीकें बढ़ाओ सरसों का व्यापार
1: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: सुनो इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे
2: वो कैसे
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना कार लोन गोल्ड लोन पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: देखो इतो बढ़िया गीत सुने आप सीमा मिश्रा को और संदेश भी सुने और अब अपना प्रोग्राम ना आगे बढ़ाते हुए सिलसिलों से जानकारी को और जानकारी देवा के लिए आज अपने बीच पधारा है सुशील कुमार शर्मा जो से वरिष्ठ वैज्ञानिक जहाँ से आज आप जानकारी ले ला सरसों की बुआई को उचित समय बुआई की विधि और बीज दर आप काय तरीका से उपचार कर सका था तो लेवा जानकारी
5: जी दिलाओ जानकारी।
6: ग्राम भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु नायक का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं। आज हमारी जानकारी का जो विषय है वो है सरसों की बुवाई का उचित समय बुवाई की विधि बीज दर उपचार और जीवाणु खाद। तो सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत नमस्कार।
7: राम राम किसान भाइयों।
6: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरसों की अच्छी पैदावार अगर हम लेना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि उचित समय कौन सा है। सही समय पर किया गया काम हमें हमेशा अच्छे फल देता है या अच्छे परिणाम उसके निकलते हैं। बात जब खेती किसानी की है और सरसों की फसल की हम बात कर रहे हैं तो कौन से समय तक या किस समय तक हम उचित बुआई कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सके।
7: जी बिल्कुल समयोचित प्रश्न है और विभिन्न क्षेत्रों में इस समय सरसों की खेती के लिए किसान भाइयों ने अपनी तैयारी प्रारंभ भी कर दी है
6: जी।
7: अलग अलग स्थान पर बुआई का जो समय होता है ना वह तापमान मानसून समाप्ति कब तक हो रही है फसल चक्र में उसने कौन सी फसल लगा रखी है आदि विभिन्न बातों के ऊपर निर्भर करती है
6: जी।
7: बुआई में देरी होने से उसका उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी जो है वो होती ही होती है
6: जी।
7: तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की बुआई जो है बिल्कुल उचित समय पर किया जाए। अब इसका उचित समय जो आपने पूछा है और किसान भाई भी जानने को उत्सुक हैं कि उचित समय कौन सा है तो बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार क्योंकि हमारे संस्थान की भी और अन्य संस्थानों से या अन्य किसी प्राइवेट उसके भी है तो उनकी भी किस्में जो निकाली गई हैं वो अगेती अलग होती हैं मध्यम समय की अलग होती है और पछेती अलग होती है। तो सरसों की जो किस्म है उसके अनुसार सितंबर मध्य से लेकर के अक्टूबर अंत तक का है अर्थात इस समय से शुरुआत। लेकिन फिर भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतया औसतन 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान किसानों को देना चाहिए। मैं आपको कुछ एरिया का बताऊं कि वहां के लोगों की एक प्रचलित धारणा है कि पहला नवरात्रा और बुधवार टलबाई नद्या कि पहला नवरात्रा है और बुधवार है तो हम तो सरसों डालेंगे चाहे 35 डिग्री ही तापमान हो और फिर वापस आ गए साहब उड़गी सरसों तो ओजू बीज दो तो वो स्थिति जो है किसानों के लिए ही नुकसानदायक होता है। आजकल तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों का जो किसान बीज लेते हैं 1100-1200 रुपए किलो तक का बीज उनका लगता है तो थोड़ा ध्यान रखें अपना आर्थिक नुकसान ना करें। और इससे इन इलाकों में जो सरसों की बुआई यदि किसी कारणवश नवम्बर में की जाए तो देरी से बुआई के लिए भी उपयुक्त किस्में हैं जैसे CS56 NRCHB101 RGN145 RGN236 RVM2 PM26 ये कुछ किस्में हैं जिनको हम नवंबर के अंत तक भी बुआई करके और कुछ पैदावार किसान भाई ले सकते हैं क्योंकि ये उसी स्थिति में होगी जहां पर कोई जैसे अगर अरहर की फसल खड़ी है या आपकी ग्वार जो है वो लेट से कट रही है तो उन क्षेत्रों के अंदर आप इस तरीके से इन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं
6: जी। समय की हमने बात कर ली अब बारी आती है बीज दर की तो सरसों की बुआई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए।
7: देखो सभी किसान भाई वैसे सामान्यतः आवश्यकता से ज्यादा ही बीज डालते हैं
6: जी।
7: बीज दर बुआई के समय किस्म और मिट्टी की नमी पर तो निर्भर करती ही करती है फिर भी अगर लाइन से लाइन में बोई गई फसल है

0: तो उसके लिए 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है
1: जी।
0: और जहाँ 4 बीघा में 1 हेक्टेयर होता है तो आप समझे 1 किलो बीघा का मोस्ट सफिशियंट उसकी सही मात्रा है, उससे ज्यादा किसान को नहीं डालना चाहिए। और बारानी लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र की तुलना में 15 से 20% ज्यादा मात्रा में बीज उसको डालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है थोड़ी खराब होती है, पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। और आवश्यकता से ज्यादा बीज अगर हम डालते हैं तो देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3,33,000 के करीब पौधे होने चाहिए सरसों के, और ज्यादा अगर हम डाल देंगे तो क्या कहते हैं ना कि अगर एक प्लेट में जितना भोजन रखा है एक व्यक्ति के लायक है या उसमें 4 व्यक्ति बैठा दिए आपने तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा, सभी को पोषित रह जाएंगे।
1: बड़े काम की बात है। अक्सर हमारा किसान सोचता है कि हम ज्यादा बीज अगर डालेंगे ज्यादा पैदावार होगी, मगर होता उल्टा है ना, क्योंकि हर पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है। तो बीज दर किसान भाइयों आप जितना हमारे विशेषज्ञ बताते हैं उसके अनुसार ही रखें। अब डॉक्टर साहब बारी आती है कि बुवाई किस विधि से करें। बीज का आपने बता दिया कि बीज दर हमें कितनी रखनी चाहिए, मगर बुवाई की कोई खास विधि जिससे कि सीधे हमारे पैदावार पर असर होता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बीज की बुवाई की विधि सबसे बढ़िया बात तो जो अभी मैं पहले भी कह रहा था कि लाइन सोइंग जो अगर हम करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी सामान्यतः क्या है कि ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ किसान भाई जुताई किए गए खेत में बीज को बिखेर करके और फिर पाटा लगा देते हैं, लेकिन अनुसंधान से ये पाया भी गया है कि सरसों की बुवाई पंक्ति में अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो ही अधिक लाभ मिलता है। सरसों के बीज को हल के साथ लगे हुए जो उसका जो सीड ड्रिल जिसको हम कह सकते हैं या पोरा या नाई का पोरा जो भी लोकल लैंग्वेज में किसान बोलते हैं उसके, या कोई यांत्रिक सीड ड्रिल हो इसके द्वारा बोया जाना ही उपयुक्त होता है। और पोरा द्वारा ड्रिल बुआई के बाद पाटा नहीं लगाया जाता है कि अन्यथा बीज क्या होगा अधिक गहराई में चला जाएगा, और यदि ज्यादा गहराई में चला गया तो फिर उस बीज से जो है उसका अंकुरण जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है
1: जी।
0: और इसके अंदर अगर जो लाइन सोइंग करते हैं तो इससे बीज की बुआई दर बुआई की गहराई का भी सही नियंत्रण हो जाता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी में एक समानता रहेगी, निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है। जैसे खरपतवार जो होते हैं अगर 30 सेंटीमीटर की आपने दूरी रखी तो बीच में से हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। यदि पौधे हमने ऐसे ही बेतरतीब लगा दिए हैं तो सरसों में विशेषकर खरपतवारों में आजकल एक नया खरपतवार जो नया तो खैर क्या काफी समय से है ओरोबैंकी नाम का एक खरपतवार जो आता है, वो खरपतवार आप उसको भी निकालना आपके लिए बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि ये जो है कि कई बार बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो किसान भाइयों को थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में ओरोबैंकी अगर आता है तो उस खेत में सरसों की बुआई ना करके मेथी या फिर अन्य किसी फसल की बुआई करें
1: जी। डॉक्टर साहब जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही हम टीकाकरण की पद्धति है उसे अपनाते हैं, तो ठीक ऐसे ही बीजों को जब बोते हैं तो बीजोपचार की जो क्रिया है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और अब आज का जो किसान है जागरूक हो गया है, तकरीबन सभी लोग इस चीज को जानने लगे हैं इस बात को, लेकिन जब बात सरसों की फसल की आती है तो किस तरीके से बीज उपचारित करना चाहिए ताकि शुरू से ही जो है हमारी सरसों की फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। शुरू की अवस्था में अगर रोगों की चपेट में अगर हमारी फसल आ जाती है तो आगे तक हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पूछी भी है और बीज उपचार के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी पहला जो आपका प्रश्न था कि बुआई की विधि, तो थोड़ा बुआई के समय कुछ सावधानियों का भी मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बुआई के समय मतलब कुछ सावधानियां ऐसी बरतें कि बीज जो सीड ड्रिल द्वारा डाला गया खाद है उसके संपर्क में ना आए। अगर बीज और खाद के दाने आपस में संपर्क में आ जाएंगे तो बीज के अंकुरण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, तो इसके लिए बीज की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें, जबकि खाद को 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर डालना चाहिए। यानी कि खाद जो है बीज से नीचे जाए 3 से 4 अंगुल, 3 अंगुल तो एटलीस्ट वो नीचे जाए ही जाए। उसके बाद में कभी भी खेत में जो पानी जो है वो भरा हुआ नहीं रहे, क्योंकि इसके बीज के जमने और पौधों की बढ़वार पर ये बुरा असर डालता है। अब आपकी हम करते हैं कि टीकाकरण और बीज उपचार जो भी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बुआई के लिए साफ स्वस्थ और रोग मुक्त प्रमाणित बीज का ही काम है ले। आप किसी भी सरकारी संस्थान से या जैसे भरतपुर में जो हमारा सरसों अनुसंधान संस्थान है वहां से आप बीज ले सकते हैं, विभिन्न प्रकार की किस्मों के बीज इस समय वहाँ उपलब्ध भी हैं और

0: किसान भाई जाकर के ले भी सकते हैं। तो प्रमाणित बीज उपयोग लें। सफ़ेद रोली से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर सफ़ेद रोली जहां पर की आती है और किसान भाई बहुत ज़्यादा उससे परेशान भी रहते हैं, वहां एप्रोन या SD35 6 ग्राम फफूंदी नाशक प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है
1: जी।
0: साथ ही साथ जो मृदा जनित या भूमि से जो रोग आते हैं उनकी रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा नाम की फफूंद से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको भी हम उपचारित करके और फिर सरसों की बुआई हमें करनी चाहिए। अगर प्रारंभिक अवस्था में चितकबरा कीट या पेंटेड बग, और ये ध्यान रखिएगा कि चितकबरा कीट और पेंटेड बग हमेशा तभी ज़्यादा अटैक करता है जब हमने उचित तापमान से अधिक तापमान की स्थिति में बुआई कर रखी है, ऐसी स्थिति में सरसों को ये तेजी से काट डालता है। तो पेंटेड बग के लिए अगर हमें कंट्रोल करना है तो इमिडाक्लोप्रिड 70 WP 7 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करके और फिर उसकी बुआई करें। तो ये सब अगर प्रक्रिया किसान भाई कर लेते हैं तो निश्चित है कि कीटों से और रोग से प्रारंभिक अवस्था में अपने सरसों की फसल को बचा पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हम जीवाणु खाद के बारे में बहुत सुनते हैं, तो क्या सरसों के लिए भी कोई उपयोगी जीवाणु खाद है, और यदि है तो हम सरसों की फसल में उसका उपयोग कैसे करें?
0: बिल्कुल, सरसों की फसल के लिए भी है और सभी फसलों के लिए जीवाणु खाद तो होते हैं। तो सरसों की फसल के लिए भी जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता बढ़ानी होती है उसमें दो जीवाणु खाद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो है एजोटोबैक्टर और दूसरा है फास्फोरस घोलक जीवाणु, जिसको सामान्य आम बोलचाल में PSB कल्चर के नाम से किसान भाई अच्छे से पहचानते भी हैं। एजोटोबैक्टर जो जीवाणु खाद होता है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराता है, परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है, और इसके प्रयोग से औसतन एवरेज अगर हम माने तो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा आप मान लीजिए परिवर्तित होकर के पौधों को उपलब्ध होती है। ये 10 से 15 किलो नाइट्रोजन का मतलब सीधे शब्दों में अगर हम समझें, 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अगर आ रही है तो लगभग 35 किलो से ऊपर यूरिया की बचत किसान की उसमें हो जा रही है। साथ ही साथ में जीवाणु बीज के अंकुरण तथा पौधे की बढ़वार में भी सहायक होने के साथ साथ भूमि में जो है अनेकों रोगकारी कवकों की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। इस जीवाणु से मृत कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी जो मृत कोशिकाएं हैं भूमि में वो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती है। ये तो बात हुई एजोटोबैक्टर की खाली। अब अगर हम फास्फोरस घोलक जीवाणु की बात करें तो फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में जितना भी अघुलनशील फास्फोरस होता है उस अघुलनशील फास्फोरस को तोड़ करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है, और जब उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देगा तो पौधे उसको ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जिससे कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके प्रयोग से औसतन 50% तक फास्फेटिक खाद की बचत की जा सकती है। अब इसको अगर हम मॉनेटरी इनपुट में समझें तो किसान भाई जिस DAP की खातिर परेशान रहते हैं 1500-1800 रुपए तक का पर बैग लेकर के आते हैं, यदि ये 10 से 15 रुपए का PSB कल्चर का पैकेट का उसका ट्रीटमेंट करके उचित मात्रा में अगर लगा करके बुआई करते हैं तो उनका फास्फोरस की आधी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ चौथाई मात्रा भी अगर उसकी बचती है तो भी 400 से 500 रुपए उनके बचेंगे। तो उसमें तो ज्यादा खर्चा तो कुछ होना नहीं है। और एक जीवाणु खाद से बीजोपचार के लिए जो तरीका है मैं थोड़ा सा एक बार वो भी बता दूं कि प्रत्येक जीवाणु खाद के 50-50 ग्राम के मिश्रण को आवश्यकता के अनुसार पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीजों के में छाया में मिलाएं, उपचारित बीज को 10 मिनट तक छाया में सुखाएं और फिर तुरंत बुआई कर काम मिलें। यदि भूमि उपचार करना है तो 4 किलोग्राम एजोटोबैक्टर और 4 किलोग्राम फास्फोरस घोलक जीवाणु के मिश्रण को 100 से 125 किलोग्राम पकी हुई या जो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको छाया में समान रूप से मिलाकर अंतिम जुताई से पूर्व खेत में बिखेर कर मिला दें, इसके तुरंत बाद सिंचाई कर। तो ये जीवाणु खाद की इम्पोर्टेंस है जो अपने आप में दिखाती है कि किसानों के लिए कितनी फायदे की चीज है ये।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते रेडियो के माध्यम से कोई संदेश या आपके मन की कोई बात जो आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ या श्रोताओं के साथ साझा करना चाहे?
0: एक नहीं दो करना चाहूंगा।
1: जी स्वागत है आपका।
0: पहली तो ये है किसान भाइयों की, जब भी आप खेत में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, जांच के आधार पर सिफारिश की गई मात्रा

0: में ही पोषक तत्व फसल को दें, ताकि आपका जो है आर्थिक रूप से भी फायदा हो और फसल को भी सही पोषण मिल सके। दूसरा, सरसों की बुआई का समय अति शीघ्र नजदीक आ रहा है और भरतपुर में हमारे संस्थान में बीज पखवाड़ा इस समय 15 से 30 सितंबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है
1: जी।
0: और 15 से 30 सितंबर के मध्य आप सरसों अनुसंधान संस्थान से जाकर के विभिन्न किस्मों में से जो किस्म आपको पसंद है उसका बीज वहां से आराम से ले सकते हैं, बीज उचित मात्रा में उपलब्ध है
1: जी। डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जो श्रोता और किसान भाई आपको सुन रहे हैं वो इस मौके का, इस अवसर का फायदा जरूर उठाएंगे। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज हमारे बीच आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और सरसों की बुआई का उचित समय, बुआई की विधि, बीज दर, उपचार और जीवाणु खाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारियां दी। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाएं,
2: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: मधु जी, इतनी बढ़िया जानकारी दिलाया डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से, तो माखो भी फर्ज बने से कि सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।
5: सुनाओ साहब।

0: और एक गीत के साथ ही ग्राम भारती कार्यक्रम में आज बस इतना एक ही साथी अश्विनी कुमार सेन
1: और रेणु ने
0: दो इजाजत और करा
1: राम राम, राम सा।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाए,
2: उन्नत तकनीकें अपनाए,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाए।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार।

0: पर
1: खेत पौधे और बीजोपचार।
0: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
1: अपना कर उन्नत तकनीके, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
0: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
1: और प्रदेश की खुशहाली का
0: तब होगा सपना साकार।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत काला पत्थर फिल्म से है। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है, संगीत राजेश रोशन का है।

और लीजिए अब मासूम फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ आरती मुखर्जी की है, गीतकार हैं गुलजार, संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरवर केंद्र से। और आइए अब घर फिल्म का गीत सुनते हैं। आवाज किशोर कुमार की है, गीत को गुलजार ने लिखा है, संगीत राहुल देवर्मन का है।

किशोर कुमार का गाया ये गीत आपने सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीत आर डी बर्मन का था और फिल्म का नाम था घर।

ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है हंसते जख्म, गीत को कैफी आजमी ने लिखा है, संगीत मदन मोहन का है।

आप तो ऐसे न थे, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ हेमलता की है, गीत को निदा फाजली ने लिखा है, संगीत उषा खन्ना का है।

हासिल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाजें थीं शान और श्वेता पंडित की। और लीजिए अब आंधी फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आंधी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आगे दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज सुनिए जुमे खान और साथियों के गाए लोकगीत।

भाई रथ यात्रा रोज करो चाहे तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। बना जी तो साहब इस गाने की कड़ी क्या कहती है, माध्यम इसका सुनिए स्टार्टिंग सिरबंदा। अरे भाया किसो जमानो आगोरे, अरे भाया किसो जमानो आगोरे, लाज शर्म और दया

चलो गोवर्ण वरण में, अरे टूट गया है नेह पापी अब, टूट रहा है नेह पापी अब। अरे हुकम सिंह ना

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: बना जी, एक और है काया के ऊपर ही, और मन के ऊपर है। जो ये मन है ना, ये अनेक तरह का है। हाँ। कैसे कैसा है, कैसा भाई? मन लोभी, मन लालची, तो मन चंचल, मन चोर, बहुत कवि कहते हैं भाई। मन लोभी, मन लालची, तो मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालियो, मन पलक पलक में और।
5: क्या बात,
4: इस मन के ऊपर क्या कहा है महाराज जी? अर मनवा नाय बिचारी रे,

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: बना जी, इस दुनिया में अपनी अपनी चतुराई सभी दिखाते हैं और अपनी चतुराई से दूसरे को उल्लू बना देते हैं। वो क्या है? एक लोकगीत है, इस दुनिया की किस्सा के रूप में है। कैसे सुने? अरे नायक वारन को

अपनी अपनी जीव टटोल है क्या देवे हलवाई को अपनी अपनी अर ना है पैसा पिए अर ना है पैसा पास में है।

0: क्या होता है बना जी?
1: क्या होता है साहब?
0: चारों ने सलाह करी
1: कि
0: मिठाई तो खानी है, मिठाई को देख करके कभी शहर में गए नहीं, अब मिठाई देख करके मन तो कर गया। अब क्या होता है?
1: क्या होता है
0: भाई? चारों ने फिर सलाह बनाई, बढ़िया के धोरे आए हैं।
2: चारों ने फिर सलाह बनाई, बढ़िया के धोरे आए हैं।
0: लाला जी तो खुश

इतने में तो खास आंध्रा खड़ो हुआ और ऐसे बोलो। शेर लड्डू शेर जलेबी तो शेर एक बर्फी तो लो। शेर लड्डू शेर जलेबी तो शेर एक बर्फी तो लो। जब तीनों ने बात सुनी एकदम सो गुस्सा।

सेठ जी से पूछी कि वो कहाँ है चारू, कि दुकान में बंद हो रहे। अच्छा क्या, कि अब तक तो उन्हें तुअल के खाई और सब पायो, अब है

कि ये बात भी सही है कि भाई उनको या तो घर बंद कर ला के कर दो या उनको वहां से भगा दो। सलाह दी तो साहब वो वहां से चल दिया और वो साहब वो चारों दुकान में बंद हो रहे हैं और नीचे अपनी कैसे कैसे बातें बतला रहे हैं। दुकान में बंद हुए हुए भाई, चारों दुकान में बंद हुआ तो मन में अपने घबराए, चारों दुकान में बंद हुआ यो मन में अपने घबराए, और फिर ऐसे बोल पड़ो कैसे छूटे घर को जाए।

सेठ जी घबराए पड़ो, घरवाला ने पूछी भाई कैसे क्या बात हो गई, कैसे घबरा रहे हो। सेठ जी ने की वहां में तो कोई मिठाई में जहर मिलो और कोई मर गो। तो कैसे कह रहे घरवाला, अरे वो तो बात थी 250 की और अब है काम हजारन।

0: मैंने कही थी, घरवाला ने समझाया वो बात तो 250 की रब है, काम हजारन को। अब तो उनको ऐसे करो, तुम अगर कोई मर गो तो वह चुपचाप ले जाए तो ठीक है, उन्हें रिपोर्ट कर दी तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो कैसे कर रहे साहब?
1: कैसे कर रहे साहब?
0: भाई राम राम जी करे सेठ जी मन अपने घबरावे है, भाई अल्लाह अल्लाह करे सेठ जी मन अपने घबरावे है। अब तो भैया चुपके हो जाओ हाथ जोड़ समझावे है, अपने मुर्दा उठा के भैया अपने घर को ले जाओ, कफन काटी भी और दिवा दू, पैसा भी मत दिए जाओ।

सुन के बाद सेठ ने उन्हें नोट पकड़ाए हैं और अर्थी पे जब लाश डाल ले तीन उंगली के आए हैं। शहर सू जब बाहर हुआ तो

आंधा ने उजमा के देखा कि यार दोस्त ने उजमा के तो देखिए कैसे भायला है भाई। आंधा ने तो दड़ पकड़ ली आंख नहीं अपनी खोले, और वो एक जगह पे धाप लिए पण उनसू मुसू ना बोले। तीनों ने

अंधा बोल पड़ो हम जाए मरे अपने घर में इतने में अंधा हर कह वे अरे कत ना कत के कहे कवि बना जी अरे कत ना कत के कहे कवि अरे यू काम होशियार।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: मन्ना जी, ये सब काया के ऊपर का भजन है जी। इस शरीर के ऊपर शरीर का वर्णन किया है, तो इसमें क्या कहा है?
3: क्या कहा
2: था? अरे गोरी दे दे हिल की रुआ वेगी, अर जावेगी अके

0: अरे अमृत छोट विषे रस पी गई विस्की बेली सुरता।
1: अभी आप लोक संगीत के कार्यक्रम में जुम्मे खान और साथियों के गाए लोक गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में समाचार दिल्ली के इंद्र से लिखे जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
3: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है।

0: इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era

0: समग्र डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
1: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the fourth largest economy and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणि मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
2: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 0 FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब 0 FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
2: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
4: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही ई

0: एफआईआर, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
3: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says changing global landscape opens new avenues for cooperation among emerging and middle powers, highlights peace, supply chain resilience and connectivity as their key agenda.

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज में, गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

0: नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों ना दिया करते हैं।
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेन।

0: थे।
1: शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरे से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था। मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

0: पर है।
1: शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

अलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिलते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है, कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है, और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन देव।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: दीवाना।
1: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
0: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

बासु भट्टाचार्य, गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: बदल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला की।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाइलाइट्स कैप्सूल दिल्ली केंद्र से

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 का समापन हो चुका है। यहाँ से एशियाई खेलों का ध्वज अब कतर की राजधानी दोहा के लिए निकल चुका है, जहाँ चार साल बाद 2030 में एक बार फिर से पदकों के लिए गदा

0: मचेगा और एशियाई देशों के धुरंधर खिलाड़ी देश के लिए एक पदक जीतने की चाह में अपने हुनर का एक एक कतरा झोंक देंगे। 20वें एशियाई खेलों की बात करें तो भारत के लिहाज से प्रदर्शन मिला जुला रहा। ओवरऑल पदकों की संख्या हांजू के मुकाबले भले ही कम हुई, लेकिन हम अपना चौथा स्थान कायम रखने में सफल रहे। इस बार जो भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, उनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। पिछले एशियाई खेलों में हमारे पदकों की संख्या 28 गोल्ड समेत कुल 106 थी। इस बार पदकों की संख्या कम होने की वजह पिछली बार के मुकाबले छोटा दल और कुछ प्रमुख खेलों में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप न होना रहा। हालांकि कुछ ऐसे खेल रहे जिनमें हमारे मैदान के योद्धाओं ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। खासकर भारत की बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया। अगर हम पदक तालिका पर गौर करते हैं तो हमने 11 स्वर्ण लड़कियों के इवेंट में हासिल किए, जबकि 7 गोल्ड लड़कों की स्पर्धाओं में रहे। 3 गोल्ड मिक्स इवेंट में आए। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय दल ने किन किन खेलों में कौन सा पदक जीता और हांजू एशियन गेम्स के मुकाबले प्रदर्शन कैसा रहा। शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड के खेल एथलेटिक्स से करते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा दल उतरा था और पदक की भी ढेर सारी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद खरी नहीं उतर सकी। इस बार एथलेटिक्स में हमने 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज समेत कुल 24 पदक जीते। पदकों की संख्या तो पिछले एशियन गेम्स के 29 पदकों के आसपास ही रही, लेकिन गोल्ड मेडल में भारी गिरावट आई। पिछली बार हमने 6 गोल्ड जीते थे। पदकों की दूसरी सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग में भी हमारी आस पूरी नहीं हुई। निशाना साधने के खेल में इस बार हमने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल जीते। 19वें एशियाई खेलों में हमारे खाते में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य समेत 22 पदक आए थे। यहाँ भी सोने के तमगे की संख्या में 4 की कमी आई। बैडमिंटन, टेनिस और घुड़सवारी ने खासा निराश किया। पिछली बार स्क्वाश में हमारे 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। इस बार कुल पदकों की संख्या तो 5 रही, लेकिन उसमें सोने का कोई तमगा शामिल नहीं रहा। 2 रजत और 3 कांस्य पदक भारत के खाते में आए। बैडमिंटन ने भी निराश किया। 2022 के एशियन गेम्स के 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक की तुलना में 2026 में सिर्फ 1 कांस्य पदक खाते में आया। टेनिस में तो पदकों का खाता तक नहीं खुला। पिछली बार 1 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 2 पदक आए थे। घुड़सवारी में भी अकाउंट ओपन नहीं हो सका। हांजू में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। दूसरी तरफ कुछ खेलों में हमारे सितारे पिछली बार से ज्यादा चमके। बॉक्सिंग में भरोसा तो था, लेकिन रिंग के उस्तादों ने उन उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। जापान में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज समेत 6 पदक आए, जबकि चीन में 1 रजत और 3 कांस्य पदक ही भारत के खाते में था। कुश्ती के अखाड़े में भी हमारे पहलवानों ने खूब दांव दिखाए और पिछली बार के 1 रजत और 5 कांस्य पदकों को इस बार 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य में बदल दिया। कमाल तो ये भी हुआ कि ग्रीको रोमन शैली में भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद फाइनल में पहुंचा। नितेश शिवाच ने ये कमाल कर दिखाया। गोल्फ में न सिर्फ पदकों की संख्या पिछली बार के 1 रजत से बढ़कर 2 हो गई, बल्कि इनमें 1 सोना और 1 चांदी का मेडल भी शामिल रहा। खास बात तो ये भी रही कि प्रणवी उर्स व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हमारे धनुर्धनों ने पदकों की संख्या को कम नहीं होने दिया। इस बार भी 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीता। खास बात ये रही कि तीरंदाजों ने न सिर्फ कंपाउंड टीम इवेंट में अपने पिछले तीनों गोल्ड मेडल को कायम रखा, बल्कि रिकर्व में भी कमाल किया। महिला टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। इतना ही नहीं, 17 साल की कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत इवेंट में भी स्वर्णिम निशाना साधा। पुरुष टीम को रजत पदक मिला। वेट लिफ्टिंग में देश की बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू ने निराश नहीं किया। पिछली बार वजन उठाने के इस खेल में हमारा हाथ खाली रहा था, तो इस बार मीरा ने रजत देश के नाम किया। टीम इवेंट में भी हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। हॉकी के पुरुष वर्ग में न सिर्फ हमारी टीम अपने स्वर्ण पदक का बचाव करने वाली एशिया की पहली टीम बनी, बल्कि महिला टीम तो उससे भी आगे निकल गई। झारखंड की सलीमा टेटे की अगुवाई में महिला टीम ने 44 साल बाद न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि बेहद मजबूत चीन को हराकर लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी कटाया। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीमें अपने गोल्ड मेडल का बचाव करने में कामयाब रही। अपने पारंपरिक खेल कबड्डी के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हमारी बादशाहत कायम रही। दोनों ही वर्गों में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली। हालांकि कुछ अन्य खेलों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले कमतर रहा। इन खेलों में हमने पिछली बार 17 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार ये संख्या 10 तक सिमट गई। इस समय हमारे साथ भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी। मोना, स्वागत है आपका।
1: शुक्रिया।
0: 19वें एशियाई खेलों में एक समय हम पदकों की दौड़ में काफी पिछड़ रहे थे और लग रहा था कि भारत का पोजीशन 2022 के मुकाबले पीछे न रह जाए, लेकिन जब अंतिम मेडल टैली आई और हम फिर से चौथा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे, तो एक खेल प्रशंसक, एक भारतीय और खेल पत्रकार के तौर पर आपने कितनी राहत महसूस की?
1: जी बिल्कुल, आखिर के 4-5 दिन में जो

0: प्रदर्शन हुआ उसने काफी राहत की सांस महसूस कराई, क्योंकि पहले 10वें 11वें 12वें नंबर पर लगातार भारत रह रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद हम टॉप 10 में आ पाएंगे भी या नहीं। एक उम्मीद जरूर थी कि कुछ टीम गेम्स के मेडल आने बाकी थे, लेकिन फिर भी लगा था कि पांचवा छठा स्थान शायद रह जाएगा। लेकिन अंत में जो आखिरी मेडल गोल्ड आया उसमें हमने उज्बेकिस्तान को पीछे छोड़कर फिर चौथा स्थान हासिल किया, तो ये जरूर राहत की बात रही। हालांकि पदकों की अगर हम बात करें तो पिछली बार सेंचुरी लगाई थी और इस बार 85 पर सिमट कर रह गए, तो वो थोड़ा चिंता का विषय रहा। लेकिन ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो अलग अलग खेलों में इस बार पदक आए हैं, तो ये हम अगर सकारात्मक देखें तो ये हो सकता है।
1: तो मोना, पदकों की कुल संख्या का कम होने के पीछे वजह क्या रही और क्या सचमुच ये हमारे लिए चिंता की बात है, या फिर जिस तरह से हमने 20 गोल्ड मेडल गवाए तो 13 नए गोल्ड मेडल जोड़े भी हैं, तो ये सकारात्मक पहलू भी तो हो सकता है।
0: जब भी हम किसी बहुराष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो जिन खेलों से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है उसमें निशानेबाजी है, बैडमिंटन है, टेनिस है और एथलेटिक्स है, तो इन खेलों में हमारा पिछली बार जो प्रदर्शन था अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो एथलेटिक्स में हमारे 6 गोल्ड मेडल थे, इस बार एक ही आया, तो काफी कुछ निराशा यहाँ रही, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत का इनमें पलड़ा भारी रहता है, तो जो अपनी ताकत है उस पर हम नहीं खेल पाए, वहाँ निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई नए खेलों में हमने, जैसे रिकर्व आर्चरी में हमने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ट्रैप शूटिंग में पदक आया, महिला हॉकी में 44 साल बाद पदक आया, तो ये कुछ अच्छे पहलू रहे। लेकिन नए खेलों में पदक जीतने के मायने ये नहीं है कि जो हमारे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल है उनमें हमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
1: हमारे पदकों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन हमें याद भी रखना होगा कि पिछली बार हमारे 700 से ज्यादा खिलाड़ियों की टीम गई थी, लेकिन इस बार उसके मुकाबले करीब करीब संख्या 200 कम थी, उसका भी कुछ असर हुआ है क्या?
0: नहीं, मुझे लगता है कि जो पदक उम्मीदें थी वो सारी ही थी इस कॉन्टिंजेंट में, और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जहां पर उम्मीद नजर आती है पदकों की, भारतीय दल का हिस्सा वही खिलाड़ी होंगे, और उसको देखते हुए लगता है कि जो रेशो रहा है वो जिनसे उम्मीद की जा रही थी, अगर वो मैदान पर उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं ला पाए तो वहां पर संख्या से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई लेना देना है।
1: मोना, हम जानते हैं कि हॉकी पर आपकी खास निगाह रहती है और भारतीय पुरुष टीम ने तो स्वर्ण का बचाव कर नया इतिहास ही लिखा है इस बार, और महिला टीम ने 44 साल बाद स्वर्ण जीतकर कमाल कर दिया है। दोनों टीमों के प्रदर्शन में इस बार क्या खास रहा?
0: देखिए, पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो पिछली बार भी हमारी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और सीधे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, और उस प्रतियोगिता में उतना जो प्रतिस्पर्धा का स्तर था वो भी इतना नहीं था। अगर आपने ग्रुप मैचेस देखे हो तो बहुत बड़े बड़े अंतर से हमने जीत दर्ज की। एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़ दिया जाए तो भारत को बहुत ज्यादा चुनौती का यहाँ सामना नहीं करना पड़ा, और जिस तरह से विश्व कप में प्रदर्शन रहा था भारतीय पुरुष हॉकी टीम का, 8वें स्थान पर रही थी, तो उस निराशा से उबरते हुए ये गोल्ड मेडल ने जरूर राहत का काम किया होगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि पुरुष हॉकी के लिए खासतौर पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रतिस्पर्धा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था। अब आगे के लिए हमें बड़ा सोचना होगा, लेकिन ये बात महिला हॉकी की अगर हम करें तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1982 में दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तब हमको गोल्ड मेडल मिला था, और यहाँ 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसे ठीक एक महीना पहले विश्व कप में 52 साल बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके पांचवा स्थान हासिल किया, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सीधे लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट कटाया है। पिछली बार पेरिस में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टोक्यो हाई के बाद, तो ये सबसे बड़ी यहाँ राहत की बात है कि अब पूरे 2 साल महिला हॉकी टीम के पास है, और जिस तरीके से टीम की तैयारियां चल रही है अगर हम ओलंपिक में पदक के दावेदारों में शामिल हो तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी।
1: तीरंदाजी में मोना हमने कमाल किया, पहले हमारी ताकत कंपाउंड इवेंट हुआ करती थी लेकिन इस बार तो रिकर्व में भी कमाल हुआ। हमारे धनुर्धरों की सफलता को लेकर आप कितनी खुश हैं और भविष्य का क्या संकेत मिलता है?
0: जो भारतीय टीम का पदक तालिका में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ वो मुझे लगता है तीरंदाजों ने ही शुरुआत की, और खासतौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी कुमकुम मोहत की, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में जिस तरीके की परिपक्वता अपने खेल में दिखाई है, कोरिया की लेजेंडरी आर्चर को हराकर गोल्ड मेडल जीता, और जिस खिलाड़ी को उन्होंने हराया उन्हें वो अपना आदर्श भी मानती है, और शूट ऑफ तक उनका एक मुकाबला गया था, जबरदस्त संयम और एकाग्रता का प्रदर्शन देते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। 3 पदक उनकी झोली में गिरे हैं, और जब चयन हुआ था तीरंदाजी टीम का तो काफी सवाल उठे थे कि अनुभव पर युवाओं को तरजीह दी गई, लेकिन यहाँ पर कुमकुम की अगुवाई में रिकर्व टीम ने इतिहास रचा और कंपाउंड

0: आर्चरी की भी अगर हम बात करें तो ज्योति व्यक्तिगत स्पर्धा में भले ही कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने प्रदर्शन जबरदस्त किया और गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला। तो तीरंदाजी में भारत का बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इन खेलों में देखने को मिला।
1: मोना, निशाना साधने की एक और खेल शूटिंग की बात करें तो वहां पर मेडल पिछले बार जितने नहीं आए, लेकिन नीरू ढांडा का प्रदर्शन, जो कि कोविड से जूझ रही थी, करियर समाप्त होने की तरफ था, लेकिन उन्होंने दो गोल्ड पर निशाना साधा।
0: बिल्कुल, इसको कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति हो, लगन हो और कुछ पाने की चाहत हो। नीरू का मैं इंटरव्यू देख रही थी और कह रही थी कि मैं आई थी तो यही सोच के आई थी कि मुझे सिर्फ गोल्ड ही जीतना है, और उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। ट्रैप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया, महिला निशानेबाज बनी और किनान के साथ मिलकर उन्होंने मिक्स में भी पदक जीता, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्वजवाहक भी रही वो क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके का उनका प्रदर्शन जारी रहा तो शायद 2004 के बाद जो शॉटगन में भारत को एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद के रूप में वो उभर सकती है।
1: जी, और कुश्ती के मैट पर भी हमारे पहलवानों ने खूब दाव पेंच दिखाया, दो सोने का मेडल भी जीता। ये पारंपरिक खेल हमारे लिए ओलंपिक में भी पदक की एक बड़ी उम्मीद हमेशा से रहा है। पहलवानों के इस बार के प्रदर्शन ने आपको कितना प्रभावित किया?
0: खास तौर पे सुजीत कलकल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हारा हुआ एक तरह मुकाबला था और वो जो वापसी की उन्होंने वो बहुत शानदार रही। अमन सहरावत के लिए भी ये वापसी वाले खेल रहे हैं, तो कुश्ती में प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा। दो गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए और आगे उम्मीद यही रहेगी कि वहां से अच्छी खबरें ही सामने आए।
1: और खासकर ग्रीको रोमन शैली में भी सालों बाद हमारा कोई पहलवान फाइनल में पहुंचा, दो मेडल भी आए। ये कुश्ती की पारंपरिक शैली नहीं है, फिर भी इस बात का संकेत तो मिलता है कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती पर भी काफी काम हो रहा है।
0: बिल्कुल, जब भी कुश्ती के मैट पे भारतीय उतरते हैं तो फ्री स्टाइल में ही माना जाता है कि वो हमारा एक मजबूत पक्ष है, लेकिन ग्रीको रोमन ने चाहे वो नितेश सिवाच हो चाहे सुनील कुमार हो, जिस तरह से भारत की झोली में पदक डाले, तो अब लगता है कि आगे किसी भी खेलों में इस शैली से भी भारत को पदक की उम्मीद की जा सकती है।
1: मुक्केबाजी में भी इस बार एशियाई देशों ने हमारे बॉक्सर्स के पंचों के दम को देखा, तीन गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। लॉस एंजलिस ओलंपिक में हमारी मुक्केबाजी क्या कमाल कर सकती है?
0: बिल्कुल, लवलीना बोरगोहेन ने जो शुरुआत की, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा और अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला, तो एक तरह से कहा जाए कमबैक ही रहा उनके लिए भी। परवीन हुड्डा ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अंकुश पंघाल, तो कुल मिलाकर तीन गोल्ड मेडल किसी भी खेल में अगर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए एक बहुत अच्छा संकेत भी है।
1: क्रिकेट और कबड्डी जैसे खेल में दोनों वर्गों में हमारी टीम्स का गोल्ड मेडल, क्या ये साबित करता है कि फिलहाल इनमें से कम एशियाई स्तर पर तो हमारी कोई टक्कर नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं है। खास तौर पे अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी जिस तरीके का प्रदर्शन था, एक ही समय पर भारत की दो टीमें अलग अलग टूर्नामेंट खेल रही है, वहाँ सीरीज जीत रही है, यहाँ पे एशियन गेम्स, तो क्रिकेट में जो भारत की गहराई है उसका कोई मुकाबला नहीं, और एशिया स्तर पर तो कोई चुनौती थी नहीं भारत के पास। कबड्डी में एक ईरान को छोड़कर किसी टीम से भारत को चुनौती मिलने की वैसे भी उम्मीद नहीं थी और भारतीयों ने उस पर खरे उतरते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम की।
1: एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में हमारी झोली में सबसे अधिक पदक आए थे। इस बार न सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पदकों की संख्या कम हुई बल्कि गोल्ड मेडल में भी ड्रास्टिक गिरावट आई। एशियन स्तर पर यह प्रदर्शन हमारे लिए कितनी चिंता की बात?
0: बिल्कुल, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि पिछली बार 6 गोल्ड मेडल आए थे, इस बार एक ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में आया है। और इस तरह के इवेंट में जो एथलेटिक्स होता है वो उसको कहा जाता है रूह है उस आयोजन की, उस पूरे खेलों की रूह है, और उसमें सबकी नजरें लगी होती है। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले ही नीरज चोपड़ा के न होने की वजह से काफी कुछ लग रहा था, रौनक कम हो गई है। डिफेंडिंग चैंपियन भी थे भाला फेंक में, लेकिन यहां निराशा हाथ लगी। अभी भाला फेंक की अगर हम बात करें तो यशवीर और रोहित ने दो पदक भारत की झोली में डाले और काफी समय तक यशवीर आगे भी चल रहे थे, लग रहा था गोल्ड आएगा, लेकिन जो इस समय एक तूफान आया हुआ है श्रीलंका के पाथिरागे के नाम से, उन्होंने एक भाला ऐसा फेंका कि वो एक गोल्ड भारत के पास से निकल गया। फिर पूजा की अगर हम बात करें वो भी काफी समय तक आगे चल रही थी लेकिन आखिरी दो प्रयास में वो भी चूक गई। मुरली श्रीशंकर हो, एनसी सोजन हो, सर्वेश कुशारे हो और तेजिंदर पाल सिंह तूर लगातार जिनका दबदबा रहा है वो भी चूके उनका गोल्ड जो है सिल्वर में, तो काफी जो गोल्ड है हमारे सिल्वर में चले गए। लेकिन रिले टीम की यहाँ तारीफ करनी होगी, महिलाओं की 4x400 मीटर, उसमें भी विथ्या रामराज की खासतौर पर, जिन्होंने लास्ट लैप में जिस तरीके से ओवरटेक किया है और भारत को गोल्ड दिलाया, तो वो एक सिल्वर लाइनिंग रहा पूरे एथलेटिक्स में प्रदर्शन में। लेकिन यहाँ जरूर निराशा रही कि 5 गोल्ड सीधे हाथ से निकल गए।
1: और गोल्फ की बात करना भी जरूरी है,

0: क्योंकि वहां भी महिला वर्ग में हमने इतिहास रचा है। जो प्रदर्शन रहा प्रणवी उर्स का, वो कैसे देखती हैं आप, कितनी बड़ी ताकत हम बनने जा रहे हैं एशिया में?
1: देखिए, आप अगर ओवरऑल देखें मेडल टैली, तो महिलाओं ने ही बाजी मारी है इस बार स्वर्ण पदकों में। मुझे रियो ओलंपिक याद आ रहा है, जब महिलाएं पदक लेकर आई थी, तो गोल्फ में भी आप प्रणवी उर्स का प्रदर्शन देखिए, शुरू से उन्होंने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और आखिर में पहली महिला बनी। कितनी ईमानदारी से लोगों ने सोचा होगा जब ये कंटिंजेंट रवाना हो रहा था कि गोल्फ में हमें गोल्ड मेडल मिलेगा, कम से कम हम लोगों ने, खेल पत्रकारों ने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी, और ये एक अनएक्सपेक्टेड गोल्ड भारत की झोली में आया है। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा टीम का भी, जिसमें अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी थी कि सिल्वर मेडल भारत की झोली में डाला। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ से देखने को मिलेगा, और इसकी शुरुआत अदिति अशोक से हुई थी जब उन्होंने ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था, और अभी महिलाओं ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया है, तो शुरुआत अच्छी हुई है।
0: उन्हें स्क्वाश में भी मेडल तो आया, लेकिन आपको लगता है कि उतना भरोसा पूरा हुआ जितने की उम्मीद थी?
1: स्क्वाश में गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की झोली में, लेकिन संभावनाएं जरूर जगी हैं, खासतौर पे अनहद सिंह ने जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं और भविष्य के लिए बहुत अच्छी उम्मीद मानी जा रही। उन्होंने पहली बार महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी रही और सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो ये एक अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए रहा।
0: साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे खेलों ने पूरी तरह से निराश किया, आप मानती हैं कि खेलों में काफी काम करने की जरूरत है?
1: देखिए, हमारी जो पूरी स्ट्रेटजी तैयार होती है खेलों की, तो उसमें फोकस इस बार ये था कि उन खेलों पर भी ध्यान दिया जाए जिनमें पारंपरिक रूप से हम अच्छे पदक जीतने की हमारी उम्मीद नहीं होती है, जैसा चीन ने किया था बीजिंग ओलंपिक से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना, क्योंकि इन खेलों में जिस तरह से निराशा सामने आई है, हर वर्ग में भारतीय फाइनल दौड़ में भी जगह नहीं बना पाए, शुरुआती दौर में ही बाहर होते गए, तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
0: और एक अंतिम सवाल, सेलिंग, सेपक टेकरा, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेल नई उम्मीद जगा गए, जबकि घुड़सवारी जैसे कुछ खेलों ने निराश किया। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेल भविष्य के लिए कितनी उम्मीदें जगाने वाले रहे और किन खेलों में और ज्यादा मेहनत करने की तरफ इशारा कर गए?
1: बिल्कुल, आप देखिए सेलिंग में जिस तरह नेत्रा कुमारन काफी अनुभवी सेलर है और डिंगी, महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में उन्होंने एक मेडल भारत को दिलाया जो पहला पदक है। जय मीना ने, जैसे आपने बात की सॉफ्ट टेनिस की, और पुरुषों की चौकड़ी ने सेपक टेकरा में भारत को पदक दिलाया। तो ये जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक ब्रॉड हुआ है, जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा चौड़ा हुआ है कि अलग अलग खेलों में हमें पदक मिले जरूर है, लेकिन जो पारंपरिक हमारे खेल हैं उनमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं। तो यहाँ पर ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक तरफ आपको ये सकारात्मक बात भी है कि आपने नए नए खेलों में प्रवेश किया, पदक को पोडियम पर खड़े हुए, लेकिन जो हमारी ताकत है उस पर भी हमें पोडियम पे ही खड़े होना है, उसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी मेडल टैली पर पड़ता है। आप देखिए टेनिस में 40 साल बाद एक भी पदक नहीं भारत को मिला, बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों गोल्ड मेडल जीते थे, शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए, तो बिल्कुल सारे हमारे धुरंधर बैडमिंटन टीम में थे लेकिन कोई पदक नहीं उसमें हाथ लगा। तो यहाँ बहुत निराशा है और इस पर जरूर आत्ममंथन करने की जरूरत है।
0: उन्होंने स्टूडियो में आने के लिए और हमसे एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: आईची नागोया में भारत का 85 पदकों का ये आंकड़ा जश्न मनाने के लिए काफी है, लेकिन कहीं न कहीं आत्ममंथन का भी संकेत है। पिछली बार के मुकाबले इस बार पदकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, जिसका मतलब है कि हमें एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ उन खेलों में भी ग्रास रूट स्तर पर काम करना होगा जहां एशियाई स्तर पर हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे हर खिलाड़ी का जोश और जज्बा ये कह रहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भारत की नींव बेहद मजबूत है। तो जीत का जश्न जारी रहे और खिलाड़ियों का ये कारवां यूं ही तिरंगा ऊंचा करता रहे। एशियन गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन पर हमारी स्पेशल कवरेज के अंतिम एपिसोड से कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर विशाल कुमार के साथ मुझे धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से लिए किए जाएंगे।

उदास है दिल, उदास दिल का रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: क्या करूं।
1: आज के छाये गीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें,
2: न तुम हमें जानो,
0: न तुम हमें जानो।
1: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
2: ए मेरे दिल कहीं और चल,
0: गम की दुनिया से दिल भर गया।
1: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन।
2: गिरे सावन,
0: सुलग सुलग जाए मन।
1: फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

फिल्म ठोकर, मजाज लखनवी, सरदार मलिक। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार। ढलती जाए रात।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत

0: रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मिथ मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मिथ तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।